0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माझी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवगेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से मुकाबला होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

पण झालं काय माहितीये, गेला रडत रडत स्वतःच ढसा ढसा

0: रंगला गंगला
1: मंगला ग मंगला ग मंगला ग मंगला
2: मंगला मी मंगला।

0: रूप जवानी रूप बनकरा हाय हाय हाय हाय ए रूप जवानी रूप बनकरा किती मिगाना गाव
1: पर गान गाता लगत कराया जवळ कशाला याव
0: जरा थांब
1: नग नग नग नग नग
2: काटा काटा सरसर काटा सरसर काटा

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना,

0: जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शाह।
1: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
3: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमिदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त और ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा 2017 में जीएसटी लागू किया गया जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई जिसे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
6: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
5: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
7: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
5: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
8: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जाँच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित

0: नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
1: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिन्दुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है। तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋत व्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेज अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है, जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में 7 सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोक सत्य ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार पत्र प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: 107.1 FM Rainbow, आप सुन रहे हैं मस्त मुंबई।

0: लोगों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मो स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मो स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।

जी अब नवा हूँ मैं आप लोगों के साथ, आपका हमराज आरजे अभिनव। हेलो हाय आदाब सर श्री अकाल, और हूँ जारी आप लोगों के साथ मस्त मुंबई में। आज हम लोग जिनकी बात करने वाले हैं वो एक कमाल की अभिनेत्री रही हैं। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं, कहानियाँ सुनती हैं सेगमेंट में मस्त मुंबई में, हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ ऐसे नामों वाले अभिनेताओं की जो अभिनेता रहे हैं, अभिनेत्री रही हैं, बल्कि अगर वो आएँ तो अपने साथ एक युग बन जाते हैं। उनकी मुस्कान

उनकी आंखों की छाया, उनकी अदाकारी और उनका व्यक्तित्व पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। आज की यह खास प्रस्तुति समर्पित है भारतीय सिनेमा की एक ऐसी महान अभिनेत्री को, एक ऐसी कलाकार जिसने सौंदर्य से ज्यादा अभिनय को महत्व दिया, जिसने स्टारडम से ज्यादा अपने किरदारों को अहमियत दी और जिसने साबित किया कि एक एक्ट्रेस केवल पर्दे पर सुंदर देखकर नहीं बल्कि अपने अभिनय से अमर बनती है। आज की कहानी है नूतन जी की। पेश करता हूँ ये जो देश है तेरा, और उसके बाद आता हूँ आप लोगों के पास वापस।

0: रिस्पॉन्स डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग
0: मोबाइल बैंकिंग
1: व्हाट्सएप बैंकिंग
0: ईकेवाईसी
1: एनईएफटी आरटीजीएस
0: आईएमपीएस
1: कॉस्मोस रुपे और वीजा डेबिट कार्ड
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ

जी हाँ, आज है 4 जून और आज की कहानी है नूतन जी की। दोस्तों, 4 जून 1936 को मुंबई में जन्मी नूतन समर्थ एक ऐसे परिवार में पैदा हुई जहाँ कला यानी कि आर्ट, अभिनय और सिनेमा का वातावरण पहले से मौजूद था। यानी कि पूरा एटमॉस्फेयर ही वैसा था, एनवायरनमेंट ही वैसा था। उनकी माँ शोभना समर्थ अपने वक्त की एक फेमस एक्ट्रेस थी और पिता कुमार सेन समर्थ फिल्म डायरेक्टर थे और कवि थे। कह सकते हैं कि अभिनय उनके खून में था, लेकिन विरासत मिल जाना और उसे अपनी मेहनत से महान बनाना दोनों अलग बातें हैं। नूतन जी ने अपने जीवन से साबित किया कि बचपन से ही वो पढ़ाई में अच्छी थी, बेहद शांत स्वभाव की थी और कमाल की मेहनत भी करती थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले वो एक प्रतिभाशाली छात्रा भी थी। पेश करता हूँ किशोरदा की आवाज़ में ये एक गीत।

0: 가봐 태양주죠?
1: 내려서 목회라게
0: 관하게
1: 우리네선가 उसकी वजह से हमने पिछला मकान छोड़ा पिताजी को जगा नहीं सकती गुस्सा करने से उन्हें दारा पड़ जाता है
0: फिक्र न करो रीजा मैं अकेला ही उसके लिए काफी हूँ चलो चलो चलेगा
1: चलिए
0: चलो चलो

0: 做乱七八糟，没啊，有车，给妈不拿点账。老白娘呀呀，妈做，你是呀呀还让俺先账？
1: 妈想起来为什么了？妈怎么还不得账？
0: 妈还不？但是这样我总在妈还不能干出去，为什么叫起来？
1: 也没人能给个什么来嘛了呢？我没人哪会这么账的啊？
0: 让做电影完全没奖金，你个伢子，你个你个人都接了三车中了，你个再找你干一个，
1: 何建生，
0: 何建生，哎，何建生，何建生，哎，哎，哎，哎，别说那红的海呀，买红金那地不好住呢，哎，哎，啊。
1: करेगा है तो जान मिर्जा के बच्चे अब मैं तेरे बुढ़ापे का ख्याल नहीं करूंगा
0: डर देता है मजदूर मैं तेरी कमरी उधेर दूंगा उस्ताद दामा का चेला हूँ अजीजा तू ठहर तू

0: डालो मुझे, मेरी चमड़ी उछेड़ दो, नहीं छोड़ूंगा मोहब्बत, शांति देवी के नाम पर जान दे दूंगा।
1: अभी जान बाकी है।

0: हमारे यहाँ जब कोई मर जाता है अजीजा तो ये बोल पड़े जाते हैं
1: उसे मर जाना।
0: मरा तो नहीं लेकिन एक दिन जरूर मर जाएगा इंशाल्लाह।
1: लेकिन वो है कहाँ?
0: मैंने उसको खिड़की के नीचे फेंक दिया है अजीजा। अजीजा तू रोती है?
1: मैंने कब कहा था इतना मारने के लिए? इतना क्या बड़ा पाप किया था? सिर्फ प्यार ही तो करता था। अब आदमी नहीं कर सकता।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मो कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

बताऊँ आप लोगों के साथ मसमूमे में और चल रही है कहानियाँ सुनती हैं ये सेगमेंट की बात। आज बात कर रहे हैं हम नूतन जी की, उनको जन्मदिन की दिन पर बधाइयाँ देते हुए उनको याद भी कर रहे हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले वो एक प्रतिभाशाली छात्रा तो रही थी और उनकी माँ ने उन्हें फिल्मों में मौका दिया और बेहद कम उम्र में नूतन जी ने कैमरे का सामना करना शुरू कर दिया था। लेकिन शुरुआती सफलता उतनी आसान नहीं थी, कुछ शुरुआती फिल्में चली कुछ नहीं चली। उस दौर में हिंदी सिनेमा में खूबसूरत चेहरों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन नूतन केवल खूबसूरत नहीं बनना चाहती थी, वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी और यहीं से शुरू हुआ एक असाधारण सफर। साल 1955 में आई फिल्म सीमा ने नूतन को एक अलग पहचान दी। एक अनाथ लड़की का किरदार, एक ऐसी युवती जो परिस्थितियों से लड़ती है, जिसके भीतर दर्द भी है और आत्मसम्मान भी। नूतन ने इस भूमिका को इतनी सच्चाई से निभाया कि पूरा देश उनकी अभिनय क्षमता का कायल हो गया और इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था।

ये केवल एक पुरस्कार नहीं था, यानी कि अवार्ड नहीं था, ये उस नई एक्ट्रेस की घोषणा थी जो आने वाले वर्षों में हिंदी सिनेमा की परिभाषा बदलने वाली थी। दोस्तों, नूतन की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी आंखें। वो बिना संवाद बोले भी पूरा दृश्य जीवंत कर देती थी, यानी कि लैवली बना देती थी। उनकी एक्टिंग में बनावटीपन नहीं था, वो किरदार को जीती थी, इसलिए जब दर्शक उन्हें पर्दे पर देखते थे तो अभिनेत्री नहीं बल्कि चरित्र दिखाई देता था। इसके बाद आया वो दौर जिसने नूतन को महान अभिनेत्रियों की श्रेणी में स्थापित कर दिया, वो था सुजाता।

जी हाँ, मेरा गोरा अंग ले ले और मुझे श्याम रंग दे दे। और बात है सुजाता की, नूतन जी ने इसमें दलित युवती की भूमिका निभाई थी और एक ऐसी फिल्म जो जाति और सामाजिक भेदभाव जैसे गंभीर विषय पर आधारित थी। उनके अभिनय में इतनी संवेदनशीलता थी कि दर्शकों की आंखें नम हो जाती थी। फिल्म केवल मनोरंजन नहीं रही बल्कि वो एक सामाजिक संदेश बन गई और इसके बाद बंद नहीं आई। और कई फिल्म समीक्षक मानते हैं कि नूतन के करियर की सबसे महान परफॉर्मेंस में से एक है ये। एक महिला कैदी एक ऐसा चरित्र जो प्रेम, पीड़ा, त्याग और संघर्ष के बीच जी रहा है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल और एफएम रेनबो का प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 104.4 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। जी हां, बात चल रही है नूतन जी की और मैं आपके पास लेकर आया हूं उनकी जिंदगी की कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंसेस की बातें। बंद नहीं आई और इस रोल में नूतन जी ने अभिनय का ऐसा स्तर दिखाया जो आज भी फिल्मी संस्थानों में उनके काम का अध्ययन किया जाता है, यानी कि रिसर्च के तौर पर शामिल किया जाता है। बंदनी में उन्होंने साबित कर दिया कि एक्टिंग केवल संवाद बोलना नहीं है, अभिनय की भावनाओं को महसूस कराना है। दोस्तों, नूतन उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में से थीं जिन्होंने हर तरह के किरदार निभाए, सामाजिक फिल्में, पारिवारिक फिल्में, रोमांटिक फिल्में, गंभीर चरित्रों, हर जगह उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। और लेकर आता हूँ अब एक और गीत।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in। हर घर

बड़ा हूँ मैं आप लोगों के बीच मस्त मुंबई में और कहानियाँ सुनती हैं चल रहा है ये सेगमेंट। बात कर रहे हैं हम लोग आज नूतन जी की और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं अपने शो के जरिए। पेइंग गेस्ट में उनकी चुलबुलाहट दिखाई दी, अनाड़ी में उनकी सहजता दिखाई दी, दिल्ली कठक में उनका ग्लैमर देखा तो सरस्वती चंद्र में उनकी भावनात्मक गहराई देखने को मिली। एक कलाकार के रूप में इतनी ज़्यादा वर्सेटिलिटी विविधता बहुत कम लोगों को हासिल होती है। उनके साथ काम करने वाले हर एक्टर अक्सर कहते थे कि नूतन कैमरे के सामने पूरी तरह बदल जाती हैं। शूटिंग शुरू होते ही वो किरदार बन जाती थी और यही रीज़न था, कारण था कि उनके सामने एक्टिंग करना आसान नहीं माना जाता था। उनकी उपस्थिति दृश्य को जीवंत बना देती थी। नूतन ने अपने दौर के लगभग सभी बड़े एक्टर्स के साथ काम किया था, चाहे वो राज कपूर हों या देवानंद, दिलीप कुमार, सुनील दत्त या राजेंद्र कुमार, और हर एक्टर के साथ उनकी जोड़ी पसंद की गई।

जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं नूतन जी की। हर एक्टर के साथ उनकी जोड़ी पसंद की गई थी, लेकिन खास बात यह थी कि नूतन कभी अपने सह कलाकारों की छाया में नहीं रही। अपनी एक्टिंग की वजह से याद रखी गई, और नूतन जी का जीवन केवल फिल्मों तक सीमित नहीं था। उन्होंने भारतीय नौसेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से विवाह किया। विवाह के बाद उन्होंने परिवार और करियर के बीच शानदार संतुलन बनाया, और उनके पुत्र मोनिश बहल बाद में हिंदी सिनेमा और टेलीविजन के लोकप्रिय अभिनेता बने। ये भी कम दिलचस्प नहीं है कि जिस दौर में कई एक्ट्रेस का करियर विवाह के बाद धीमा पड़ जाता था, नूतन ने विवाह के बाद भी शानदार भूमिका निभाई। बढ़ती उम्र के साथ उन्होंने खुद को एक नए किरदारों में ढाला। उन्होंने माँ की भूमिकाएं भी निभाई, और उनमें भी वही गरिमा दिखाई दी जो उनकी एक्ट्रेस वाली भूमिकाओं में दिखाई देती थी। ये एक सच्चे कलाकार की पहचान होती है। वक्त बदलता है, भूमिकाएं बदलती हैं, लेकिन कला नहीं बदलती। तो दोस्तों, नूतन जी ने अपने करियर में 5 बार फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीता था, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था, और कई वर्षों तक इस रिकॉर्ड तक कोई भी नहीं पहुंच सका है। और ये सम्मान केवल लोकप्रियता का नहीं था, ये उनकी एक्टिंग की उत्कृष्टता का प्रमाण था। लेकिन पुरस्कारों से कहीं ज़्यादा बड़ा था ऑडियंस का, दर्शकों का प्रेम। आज भी जब सीमा सुजाता, बंदनी, मिलन, सरस्वती चंद जैसी फिल्म देखी जाती हैं, तो नूतन की एक्टिंग को उतना ही ताज़ा महसूस किया जाता है जितना दशकों पहले था। सच्ची कला की यही पहचान है, समय की सीमाओं से पार कर जाती है। अंतिम वर्षों में नूतन जी कैंसर जैसी बीमारी का सामना उन्हें करना पड़ा था, और उन्होंने अपनी गरिमा और साहस कभी नहीं छोड़ा। 21 फरवरी 1991 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन कलाकार कभी सचमुच विदा नहीं होते, वो अपने काम में जीवित रहते हैं, अपने किरदारों में रहते हैं, और दर्शकों की स्मृतियों में जीवित रहते हैं। वो आज भी जिंदा हैं, हर उस दृश्य में जहाँ एक्टिंग सच्ची है, हर उस कलाकार में जो अपने किरदार को ईमानदारी से जीना चाहता है, हर दर्शक के दिल में जिसने कभी उनकी फिल्में देखी हैं। अगर हिंदी सिनेमा को एक विशाल पुस्तक माना जाए, तो नूतन उसका स्वर्णिम अध्याय है। मैं हूँ आपका अपना हमराज आरजे अभिनव। इजाज़त दीजिए, और दोबारा आ रहा हूँ आप लोगों के पास दूसरे शो में।

नमस्कार, और अब वक्त हो चला है आज के हिंदी समाचार का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कल नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में महाराष्ट्र ने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। के भंडारा जिले की इटगांव ग्राम पंचायत को बाल हितैषी पंचायत श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है, जबकि रायगढ़ जिले की खारीवली ग्राम पंचायत को जल पर्याप्त पंचायत श्रेणी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। दोनों ग्राम पंचायतों को 1-1 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि दी गई। नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। नई दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसका उद्देश्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकना है। यह प्रस्ताव 215 के मुकाबले 208 मतों से पारित हुआ। 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट सांसदों का साथ दिया है। और ये थे आज के हिंदी समाचार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष्य में सुप्रसिद्ध गायिका छाया गांगुली से यूनुस खान की विशेष मुलाकात। निर्माण सहयोग श्वेता मराठे, प्रस्तुतकर्ता नेहा खरे। आपके सामने

0: दोस्तों नमस्कार, मैं यूनुस खान हूं और आज आकाशवाणी के स्टूडियो में हमारे साथ जानी मानी गायिका विदुषी छाया गांगुली मौजूद हैं, जिनका विविध भारती से बड़ा पुराना नाता रहा है और इनके बनाए संगीत सरिता कार्यक्रम आज तक लोग याद करते हैं। छाया जी, एक बार फिर से आकाशवाणी के स्टूडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ।
1: नमस्ते यूनुस जी।
0: नमस्ते छाया,
1: फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए।
0: छह जी, जब आप होती है ना तो संगीत सरिता जरूर याद आता है और आपकी जो पूरी यात्रा है उसमें संगीत सरिता की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संगीत सरिता को आपने एक नया और शानदार रूप भी दिया है। देश भर के तमाम बड़े कलाकारों के साथ आपने श्रृंखलाएं शुरू की और पिछली बार जब आपसे बात हो रही थी तो हमने बातें की थी एन राजम जी की श्रृंखला की और उस्ताद अमजद अली खान साहब की श्रृंखला की, पर ये तो दो सीरीज हैं, ऐसी असंख्य सीरीज हैं जिनमें कुछ बड़े गुणी कलाकार हैं, तो मुझे लगता है कि आज की इस बातचीत में हम उनमें से कुछ श्रृंखलाओं को याद करेंगे और उनसे जुड़े अनुभवों को याद करेंगे।
1: जरूर, जैसे ये श्रृंखला नाद निनाद डॉक्टर विजय राघव राव ने प्रस्तुत किया था।
0: जी जी,
1: 14 एपिसोड की श्रृंखला में उन्होंने स्वर की उत्पत्ति से आरंभ कर हिमालय से कन्याकुमारी तक भारतीय संगीत की सभी विधाओं पर चर्चा की।
0: बहुत ही गहन ज्ञान से भरपूर श्रृंखला थी
1: जी। और इसमें हमने 54 ऑडियो क्लिप्स इंसर्ट किए थे।
0: बाप रे।
1: और विजय राघव राव जी ने शास्त्रीय संगीत के हर पहलुओं पर प्रकाश डाला था।
0: वाह।
1: ध्रुपद, धमार, खयाल, उपशास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, भजन, लोक संगीत इत्यादि।
0: छह जी, इतनी सारी बातें हुई हैं तो मुझे लगता है कि नाद निनाद का एक अंश सुन लिया जाए, लोगों को भी याद आएगा कि ये कितनी अद्भुत श्रृंखला थी।
1: जरूर सुनाइए।
2: मित्रों नमस्कार। सदियों के मंथन के बाद इस महान संगीत सागर में नाद से स्वर निकले, स्वरों के गुंफन से सप्तक, सप्तक से ठाट, ठाट से राग और फिर गीत, वाद्य और नृत्य की अपना देश में एक बेमिसाल परंपरा कायम हो गई।

हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और कर्नाटक संगीत पद्धति आज भारतीय संगीत के दो सुप्रतिष्ठित स्तंभ है जो कि अपने आप में परिपूर्ण है और एक सृजनात्मक संगीतकार के लिए भारत के मनोधर्म संगीत से कदम कदम पर प्रेरणा मिल सकती है। राग की अभिव्यक्ति को वो किसी भी अद्भुत रूप में प्रस्तुत करके आनंद दे सकता है। जी हाँ, कालचक्र के परिवर्तन में भारतीय संगीत विविध दिशाओं में विकसित होते होते अनेक मंजिलों से गुजरता आया। पहले मंत्रोच्चारण के रूप में यज्ञशाला में रहा, बाद में भक्ति संगीत के रूप में मंदिरों में आ गया, फिर रंगमंच पर नाट्य संगीत के रूप में नृत्य संगीत यानी तिल्लाना, फिर हम सुनते आए सदन संगीत हवेलियों में, बैठकों में, दरबारों में, परिषदों में।

0: वाकई छाया जी, हमारे देश के हर प्रांत का लोक संगीत इतना अनूठा है कि विभिन्न प्रांतों की लोक धुनों में उस क्षेत्र की मिट्टी की सूंधी खुशबू आती है। विजय राघवराव जी ने लोक संगीत की इस खासियत से भी श्रोताओं को परिचित कराया था। मुझे याद आता है कि मैहर घराने पर एक अद्भुत श्रृंखला आपने की थी, उसका जिक्र कीजिए।
1: मैहर घराना और उसकी समृद्ध परंपरा
0: जी,
1: श्रृंखला की 21 कड़िया प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद आशीष खाजी ने पेश की थी
0: जी,
1: और इसकी स्क्रिप्टिंग किया था श्री मदनलाल व्यास जी ने।
0: ओ
1: जी, तो बाबा अलाउद्दीन खां और उनके विश्व विख्यात शागिर्द उस्ताद अली अकबर खां साहब सरोद, पंडित रविशंकर सितार, विदुषी मां अन्नपूर्णा देवी जी सुरबहार, पंडित तिमिर बरन सरोद, पंडित पन्नालाल घोष बांसुरी, पंडित वीजी जोग वायलिन और पंडित निखिल बैनर्जी सितार और अन्य कई नामचीन कलाकारों के बारे में जानकारी तो दी ही गई थी
0: जी जी।
1: इस श्रृंखला के दौरान ही मां अन्नपूर्णा देवी जी की सुरबहार रिकॉर्डिंग पहली बार रेडियो पर प्रसारित हुई।
0: बिल्कुल, मुझे याद है। इसके अलावा इटावा घराने की चर्चा भी संगीत सरिता में हुई थी।
1: उस्ताद इमदाद खान साहब के बेटे थे उस्ताद इनायत खान साहब
0: जी जी जी,
1: और उनके बेटे थे उस्ताद विलायत खान साहब, जिन्होंने इटावा घराने के बाज को बड़ी ऊंचाई तक ले गए थे।
0: जी जी बिल्कुल।
1: उस्ताद विलायत खान साहब के सबसे वरिष्ठ सीनियर शिष्य पंडित अरविंद पारिक जी ने इटावा घराने के बाज गायकी अंग की खासियतों पर रोशनी डाली थे।
0: अरे वो गजब की श्रृंखला है, और उसमें वो जिस तरह से अरविंद पारिक जी बोलते हैं और जानकारियां देते हैं, कमाल की श्रृंखला है। फिर मुझे एक और श्रृंखला याद आती है, जाफर खानी बाज
1: जी। उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब ने जाफर खानी बाज पर श्रृंखला प्रस्तुत की थी। इसके अलावा उन्होंने एक और श्रृंखला पेश की थी, चित्रपट संगीत में राग संगीत।
0: ये दोनों श्रृंखलाएं एक तरह से जैसे संगीत की तालीम है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। उस जमाने में नौशाद जी और अन्य सुप्रसिद्ध संगीतकार सितार बजाने के लिए इन्हीं को बुलाते थे
0: जी।
1: मिसाल के तौर पर अत्यधिक लोकप्रिय मधुबन में राधिका नाचेरे में उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब ने ही सितार बजाया था
0: जी जी जी।
1: इसी गीत को फिल्माने के लिए दिलीप कुमार साहब ने कई दिन तक उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब से सितार बजाना सीखा था, और मुगले आजम के सभी गीतों में भी उन्होंने ही सितार बजाया था।
0: छह जी, शास्त्रीय संगीत में पारंगत ऐसे कुछ और कलाकारों के बारे में बताइए जिन्होंने फिल्म संगीत में भी अच्छा खासा योगदान दिया है।
1: जैसे पंडित शिव कुमार शर्मा जी, आप तो जानते ही, हम सभी जानते हैं कि संतूर को एकल वाद्य के रूप में मंच पर लाने का पूरा श्रेय
0: उनको जाता है,
1: पंडित शिव कुमार जी को ही जाता है, और उन्होंने संतूर यात्रा पर भी 10 एपिसोड किए थे।
2: शिव कुमार शर्मा का नमस्कार लीजिए संतूर की इस यात्रा में। हमारे संगीत में मींड का बहुत महत्व है। हमारे भारतीय संगीत में, शास्त्रीय संगीत में स्वरों को तोड़ा नहीं जाता। हर वाद्य बजाने वाला ये कोशिश करता है कि जैसे गायक गाता है अपने अपने अंदाज से, अपने अपने साज के तरीके के हिसाब से, उसके स्वभाव के अनुसार उस बात को साज पर, वाद्य पर कहा जाए, और कैसे कहा जाए हर एक का तरीका अलग है। तो मैंने जब इस चीज़ को सोचना शुरू किया तो पहले तो मैंने यही कोशिश की, जो भी चीज़ मैं स्टेज पे बजाता था उसको पहले मैं घर पे रिकॉर्ड करके सुनता था, उस पर एक्सपेरिमेंट करता था कि मुझे कैसा लग रहा है। मैंने हमेशा अपना संगीत ऐसे बजाया है कि लोगों को कैसा लग रहा है वो बाद में सोचा है, पहले वो मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो इस सिलसिले में भी मेरा वही जो लॉजिक था उसी पर मैं काम करता रहा। कैसे बजता था संतूर, मैं आपको थोड़ा सा बजा करके सुनाता हूँ। मान लीजिए ये स्वर बजाने हैं, अभी राग बिहाग है, ऐसा बजता था। अब जब मैं आपसे कह रहा था कि ऐसे कोई गायक तो गाता नहीं है, टा टा टा टा टा ऐसे तो नहीं गाता है, हम सुर पे ठहरते हैं।

अब इसको हम कैसे बजाएंगे? तो मैंने क्या कोशिश की, पहले तो ऐसे बजता था, मतलब कट नोट्स बज रहे हैं। तो मैंने जो कलम होती है, इसका स्ट्राइकर जो होता है, उसी के इस्तेमाल से हम सुर को कैसे बगैर तोड़े हुए बजा सकते हैं, उसकी कोशिश इस तरीके से की।

अभी आपने गौर किया होगा कि स्वर टूट नहीं रहा है और ये संतूर की टेक्निक है। इसको किसी और सांस के अंदाज से मैंने कोशिश पहले की लेकिन मुझे वो ऐसा महसूस हुआ कि वो अधूरापन है, वो उस जो ओरिजिनल सांस पे बजेगा इस पे नहीं बजेगा वैसा। तो कई बरसों के बाद मुझे ये सूझी बात कुछ कहाँ से, तो अब जो बात हो रही है वो संतूर के अंदाज की हो रही है। मान लीजिए हम एक मुखड़ा कोई इस पर बजाना चाहें,

साजन हमारो सिंगार। अब इसको हम बजाना चाहें तो पहले ऐसे बजता था, अभी उसको

अब इसको हम कहेंगे संतूर के अंदाज की नीड। तो ये काम जो बहुत बरस के बाद मेरे जहन में आया,

0: कि इसमें मींड का काम कैसा हो सकता है।
1: छाये जी, पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने शिव हरि के नाम से फिल्मों में संगीत दिया और अच्छे खासे कामयाब रहे।
2: जी हाँ, और ये बहुत सफल रहे। पंडित शिव कुमार शर्मा ने राग पहाड़ी और राग भैरवी पर आधारित फिल्मी गानों पर पार्श्व संगीत के रंगीन ताने बाने श्रृंखला प्रस्तुत किए थे।

0: ये अपने आप में ये सारी श्रृंखलाएं जो हैं ये बेमिसाल हैं, लेकिन एक श्रृंखला जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुई और अभी तक विविध भारती पर उसे बजाने की फरमाइशें भी आती हैं और बजाया भी जाता है, वो है पंचम यानी आर डी बर्मन, गुलजार और आशा भोसले वाली श्रृंखला मेरी संगीत यात्रा। मैं चाहता हूं कि इस बेमिसाल सीरीज के बनने की कहानी आप यहां पर सुनाएं।
1: विनोद जी, मैं पहले आपको बता दूं, इस श्रृंखला के बनने का पूरा श्रेय पंचमदा को जाता है। पंचमदा यानी आर डी बर्मन जी से पहली बार मैं HMV के दफ्तर में मिली थी। जब मैंने पंचमदा से संगीत सरिता के लिए रिकॉर्ड करने का अनुरोध किया, वो तुरंत राजी हो गए, पर उन्होंने तब तक कार्यक्रम नहीं सुना था। उन दिनों डॉक्टर अनीता सेन जी की बहुत ही रोचक श्रृंखला राग रंजन का प्रसारण हो रहा था।
0: वाह!
1: पंचमदा ने पूरी श्रृंखला सुनी और उन्हें बहुत पसंद आई। फिर उन्होंने ही सुझाव दिया कि गुलजार जी उन्हें इंटरव्यू करें।
0: जी,
1: वे मुझे स्वयं उनके घर ले गए। फिर पंचमदा ने ही आशा जी से फोन पर मेरी बात कराई और इस तरह उनको भी शामिल कर 15 एपिसोड रिकॉर्ड किए।
0: क्या बात है!
1: तीनों दिग्गजों ने मिलकर खूब रंग जमाया।
0: अरे क्या श्रृंखला थी वो, और मुझे लगता है कि जरूर उसमें से कुछ सुनना चाहिए।
1: जरूर सुनाइए।
0: बिल्कुल।
2: नमस्कार, हम तीनों आपके सामने फिर से हाजिर हैं। मैं आज आपको वो गाना सुनाने जा रही हूँ जिसको मुझे नेशनल अवार्ड मिला था। उस गाने की खास बात है कि उसमें जो लिखने वाले ने ऐसे नाजुक नाजुक चीज़ें दी हैं कि मेरा मन अवाक हो गया था सुन के, जैसे मेरा मन गीला मन बिस्तर के पास पड़ा हो।
3: अच्छा, वो
2: और वो डाली कांप रही हो या छतरी के नीचे हम जा रहे हो, ऐसे नाजुक नाजुक चीजें दी हैं। क्या थी आप बताइए।
4: आयशा जी, आप जानती हैं ये गाने, खास तौर पर ये गाना बहुत से हादसे में से गुजरा, एक्सीडेंट्स में से गुजरा है, वरना ये गाना तो रिकॉर्ड ना होता। ये जो मेरे दोस्त हैं, ये जो हालत करते हैं मेरी, कि तुम्हें कोई मीटर वीटर तो आता नहीं, पता नहीं कौन से मीटर लेके चले।
2: ऐसी हालत करते हैं।
3: मेरा कुछ सामान की बात कर रहे
4: हैं। जी हां,
2: वो लगेज
4: और मेरी तरफ मुंह की तरफ देखे वो लगेज सॉन्ग ले आया। कल उठा टाइम्स ऑफ इंडिया उठा के ले आएगा कि इसकी ट्यून करो, तो मैं क्या इन्होंने ये हरकत की।
3: वाकई ऐसा पहले तो मुझे ऐसे ही लगा था, लेकिन उन्होंने जब मुझे पूरा सिनेरियो समझाया कि ये सीन के बाद ऐसा होगा, उसके बाद ये गाना आएगा।
4: अच्छा,
3: और ये बोल आएगा।
4: हाँ,
3: तो आई वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड।
4: मैं आशा जी को एक और बात याद दिला दूं कि ये गाना आपने कभी ना किया होता अगर आशा जी उस शाम वहां पे ना बैठी होती जब मैं जिद कर रहा था इस गाने पे।
3: बिल्कुल।
4: और आशा जी ने वो लास्ट का फ्रेज एक गुनगुनाना शुरू किया था,
3: लौटा दो
4: उतना सा फ्रेज, और आपने मुड़ के पूछा था क्या क्या क्या गाया। हाँ, क्या था
3: तो उसमें से
4: उस फ्रेज में से आपने उसको इलेबोरेट करते करते उसका जब गाना बनाना शुरू किया तो फिर उसके बाद आपने गाने का पीछा नहीं छोड़ा।
3: लेकिन वाकई ये गाना पता नहीं गुलजार का साथ ऐसा होता
4: ही। उस वक्त मुबारकबाद नहीं कही थी, आज आपको मुबारकबाद देता हूँ नेशनल अवार्ड जीतने की इस गाने पर।
2: थैंक यू।
3: चलिए गाना सुनते हैं।
4: जी हाँ।

0: विजय जी, एक श्रृंखला और है जिसके बारे में मैंने आपसे बहुत कुछ सुना है, वो है उस्ताद जाकिर हुसैन खान साहब वाली सीरीज। और कितना तो वक्त लग गया था उसको रिकॉर्ड करने में।
1: जी, दरअसल जाकिर भाई की डेट्स के लिए मैं उनकी बहन रजिया जी के संपर्क में थी।
0: अच्छा,
1: क्योंकि जाकिर भाई ज्यादातर विदेश में रहते थे ना। एक दिन अचानक रजिया जी का फोन आया कि जाकिर भाई पुणे में हैं और क्या मेरे लिए पुणे आकर कुछ एपिसोड रिकॉर्ड करना संभव होगा। मुझे तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई थी
0: जी।
1: पहले 4 एपिसोड की रिकॉर्डिंग मैंने पुणे आकाशवाणी में की, बाकी एपिसोड्स की रिकॉर्डिंग विविध भारती मुंबई के स्टूडियो में सुबह 6 बजे से लगभग 11:30 बजे तक की। तबला के हर घराने के दिग्गज कलाकारों की विशिष्ट शैली से श्रोताओं को वाकिफ कराया।
2: हमारे हिंदुस्तान के शास्त्रीय संगीत में तबले के कई घराने हैं, जैसे दिल्ली, लखनऊ, पंजाब, बनारस, फर्रुखाबाद, अजराड़ा, मेरठ, पूरब अंदाज, ये सब एक मतलब वो ब्रांचेस बन जाते हैं जैसे। तो पेशकार अलग अलग घराने में अलग अंदाज के बजते हैं। तो पेशकार बजे, पेशकार के बाद तबले में कायदे की तरफ ध्यान जाता है, तो कायदे बजते हैं। कायदे तबले में दिल्ली की देन है, तो कायदा सुनिए। धा धा तिट्टे धा धा तिन्ना ता ता तिट्टे धा धा तिन्ना।

0: क्या गजब की श्रृंखला थी। अब जो भी श्रृंखला मैं याद कर रहा हूं और जिनकी बातें हो रही हैं, ये ऐसी श्रृंखलाएं हैं कि इनको एक बार सुनने से मन नहीं भरता। ऐसी ही एक श्रृंखला वो थी संगीतकार अनिल बिस्वास पर जो आपने बनाई थी, रसिकेशु। मुझे याद है कि जब अनिल दा स्टूडियो में मौजूद थे तो आपने मेरी भी उनसे मुलाकात करवाई थी और मुझे उनका चरण स्पर्श करने का सौभाग्य मिला था। उस श्रृंखला के बारे में बताइए।
1: जरूर, अनिल विश्वास जी ने 26 एपिसोड्स किए थे और कार्यक्रम का शीर्षक भी उन्होंने ही रखा था,
0: रसिकेशु।
1: ये उन्होंने सजेस्ट किया था, हमारा नहीं है। तुषार भाटिया जी ने उनका साक्षात्कार किया। पहले 12 एपिसोड्स में आरसी बोराल से लेकर आरडी बर्मन जी तक सिलसिलेवार तरीके से सभी संगीतकारों की बात की
0: जी।
1: उसके बाद उन्होंने अपने संगीत सृजन के विभिन्न पक्षों के बारे में विस्तार से बात की। इन एपिसोड्स को उन्होंने गायिका धर्मपत्नी मीना कपूर जी के साथ प्रस्तुत किया था।
0: इन एपिसोड्स में शायरी की बातें भी बहुत कमाल की बातें।
1: उन्होंने बंगला में गजल पर किताब भी लिखी है, गजल ए रॉन्ग।
0: वाह वाह वाह, गजल के रंग। विविध भारती की जब शुरुआत हुई थी 3 अक्टूबर 1957 को, तो जो पहला गीत बजा था वो था नाच रे मयूरा।
1: बिल्कुल,
0: पंडित नरेंद्र शर्मा ने इसे लिखा था और अनिल दा की धुन थी और मन्ना डे ने इसे गाया था।

0: बिल्कुल, आप उसको ध्यान से सुनिए। जब पंचम शब्द आता है तो नोट स्वर पंचम बज जाता है,
1: वाह वाह
0: और
1: वाह,
0: गंधार तो गंधार,
1: ये गुणी कलाकार
0: गुणी
1: है।
0: कलाकार
1: बिल्कुल छह जी, यहाँ आपने मीना कपूर जी को भी याद किया।
0: जी,
1: उनका वो गाना सुनते हैं,
0: वो सुनाते, कुछ और जमाना कहता
1: क्या
0: था।
1: बात है।
0: यू नो दिस वॉज देयर स्वान सॉन्ग,
1: जी
0: ये उनका लास्ट भेंट उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को दिए थे।
1: मोतीलाल जी की फिल्म थी छोटी छोटी बातें,
0: नादिरा जी पर
1: है ना,
0: फिल्म आई,
1: और
0: बहुत
1: नादिरा जी और मोतीलाल हैं, एक नाव जा रही है। संगीतकार थे अनिल विश्वास और इस गाने को शैलेंद्र जी ने लिखा।
0: जी जी
1: सुनते हैं।

0: छह जी, एक और बड़ी महत्वपूर्ण सीरीज थी, क्योंकि हम संगीत सरिता की जो पूरी यात्रा है उस पर बात कर रहे हैं, पंडित जसराज जी वाली सीरीज।
1: जी, पंडित जसराज जी ने हमारे साथ हवेली संगीत पर संगीत सरिता की थी।
0: जी जी,
1: उनसे बातचीत की थी पंडित आस्करण शर्मा ने। हवेली संगीत यानी पुष्टि मार्गीय संगीत
0: जी,
1: जो सुबह मंगला दर्शन से रात्रि में शयन दर्शन तक प्रत्येक प्रहर के अनुसार पद गायन की अद्भुत परंपरा है। यानी मंदिर में अष्ट प्रहर सेवा के समय गाई जाने वाली पदावली राग सेवा,
0: ये तो बिल्कुल अलग श्रृंखला है और इसमें बड़ा गहन ज्ञान छिपा हुआ है।
1: और हर बंदिश आप किसी ना किसी राग पर बेस्ड पाएंगे।
0: बिल्कुल, उसमें ये देखते हैं कि आस्करण जी भी जानकारियां दे रहे हैं, तो दो बड़े विद्वान एक साथ मिले थे वहां पर।
1: क्योंकि मैं उनको ही बुलाती थी जो कलाकार के काम से वाकिफ हूँ।
0: आपके स्टूडियो में एक बार चले जाएं तो कोई रिकॉर्डिंग हो रही तो वहां से हटने का मन नहीं करता था, इतनी ज्ञानपूर्ण बातें वहां पर हुआ करती थी।
1: सीखने को मिला यूनुस जी।
0: जी,
1: एक्चुअली वी आर ऑल वेरी लकी टू गेट दिस चांस टू वर्क इन आकाशवाणी, मुझे ऐसा लगता है।
0: छाया जी, आपकी खुद की गायकी का मैं भी मुरीद रहा हूँ। आपकी कुछ गैर फिल्मी गजलों के एल्बम आए हैं, भजनों के एल्बम आए हैं, जैसे भक्ति सुधा वगैरह, उनके बारे में बताइए।
1: जरूर, जयदू जी के दूरदर्शन कार्यक्रम आरोही में मैंने नक्शलाल पुरी जी का लिखा गीत गाया था।
0: जी जी,
1: जयदू जी ने राग शुद्ध सारंग में इसे कंपोज किया था, जो मुझे बहुत पसंद है।
0: वाह,
1: मशहूर रिकॉर्डिंग कंपनी HMV के वाइस प्रेसिडेंट ने यह कार्यक्रम कलकत्ता में देखा
0: जी।
1: और अपने मुंबई ऑफिस में फोन करके मुझे तुरंत साइन करने को कहा।
0: क्या बात है,
1: तो इसको सुनाए, इस गीत को कौन मेरे मन को समझाए।
0: वाह वाह वाह, सुनते हैं।

0: कितना अच्छा लगा इस रचना को सुनकर। जाए जी, HMV के साथ कौन कौन से एल्बम किए थे आपने?
1: हाँ यूनुस जी, मैंने HMV के साथ 4 सोलो एल्बम रिकॉर्ड किए थे
0: जी।
1: पहला था भक्ति सुधा,
0: शानदार भजन थे,
1: जयदू जी द्वारा संगीत बद्ध किए भजनों का संग्रह
0: जी।
1: बाकी 3 LP गजलों के थे। पहला था इल्तिजा,

0: फिर तस्कीन और इश्क।
1: क्या बात, मुझे याद है कि नाज था खुद पर मगर ऐसा न था। और एक और गजल मुझे बहुत पसंद है जो आप गाती हैं उस एल्बम में, समंदरों पर बरस के।
0: जी, जो आपने अभी जिक्र किया, इट इज फ्रॉम एल्बम इश्क।
1: वाह।
0: कि नाज था खुद पर, इसके कंपोजर थे जाने माने प्लेबैक सिंगर भूपेंद्र सिंह जी।
1: अरे गजब,
0: वन ऑफ द फाइनेस्ट गिटारिस्ट इन द इंडस्ट्री, और कंपोजर भी रहे, गायक भी बहुत बड़े थे।
1: ये जो एल्बम है, ये इनका एक नशा अलग है कि अगर आप कोई एक गजल सुन लेते हैं तो फिर आप बहते चले जाते हैं।
0: बहुत खूबसूरत कंपोजिशंस है।
1: छाया जी, इसमें और कौन कौन कंपोजर्स थे?
0: मधुरानी जी मेरी गुरु, फिर के महावीर जी, श्री मानस मुखर्जी, भूपेंद्र मिताली सिंह जी और शरीफ अहमद खान साहब की कंपोजिशंस थी। मधु दीदी के घर पर शरीफ भाई हमें तबले के साथ बहुत रियाज करवाते थे
1: जी।
0: मेरी ज्यादातर गजल एल्बम्स में उन्होंने ही तबला बजाया था। शरीफ भाई के जाने के बाद डॉक्टर अनीश प्रधान ने भी मुझे बहुत रियाज करवाया, सिखाया, और म्यूजिक टुडे के एल्बम हुस्ने जाना में अनीश प्रधान जी ने तबले पर संगीत भी की थे।
1: क्या बात है, क्या ये वो एल्बम है जिसमें आपने नजीर अकबर आबादी को गाया है?
0: जी जी जी।
1: वाह वाह, वो मुझे लगता है खूरेज करिश्मा नाज सितम।
0: जी, और एक होली भी गाई थी उनका ही,
1: जब फागुन रंग झमकते हों तब देख बहारे होली की। वाह वाह, नजीर की रचना, क्या बात है, क्या
0: आपको
1: बात
0: तो
1: है?
0: सब याद है, क्या बात है।
1: इसके अलावा शेखर दा के साथ जो किया था
0: जी, शेखर सेन जी के एल्बम संपूर्ण सुंदरकांड
1: जी,
0: उसमें भी मैं गई थी, और मेरा ख्याल है उसका कंसल्टेंट पंडित नरेंद्र शर्मा जी,
1: बिल्कुल जी,
0: उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया था।
1: वाह।
0: और उन दिनों में HMV के आर्टिस्ट भी थे ना, उनके कॉन्ट्रैक्ट में थी, ये 87 में हुआ था
1: जी।
0: और मुजफ्फर अली जी के सोनी म्यूजिक एल्बम पैगाम मोहब्बत में एक नज़म और एक डुएट भी मैंने गाए।
1: वाह वाह, क्या बात है। ये वो था जिहाले मिस्की,
0: जिहाले मिस्की फ्रॉम हुस्ने जाना।
1: अच्छा।
0: इसमें था फर्ज करो हम अहले वफा के, फर्ज करो।
1: क्या बात है, ये इतनी कमाल की चीजें हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे एक एक रचना सब सुन ली जाए। पर यहाँ कुछ सुना जाए क्या, इन एल्बम्स में से कुछ एक बजाना चाहेंगे?
0: जरूर, हम हुस्ने जाना से सुना देते हैं
1: जी,
0: खुरेज करिश्मा नाजो सितम।
1: वाह, सुनते हैं।

0: शाह जी, मेरी बहुत ही फेवरेट एल्बम है थोड़ा सा रूमानी हो जाए
1: जी,
0: अमोल पालेकर जी की फिल्म है जिसमें आपने गाया था, और इसके अलावा त्रिकोण का चौथा कोण में जयदेव जी के संगीत निर्देशन में आपने गाया था। पर ये जो थोड़ा सा रूमानी हो जाए में टाइटल सॉन्ग तो है ही, धार धार बरसे तार तार बरसे, ये जो बारिश गीत है इसके बिना कौन सी बारिश बीत सकती है।
1: बहुत खूबसूरत कंपोजिशन, कंपोजर थे भास्कर चंदावरकर।

0: बहुत गुणी थे, उनको वेस्टर्न म्यूजिक का भी उतना ही मालूमात था और सितार भी उन्होंने पंडित रविशंकर जी से सीखा था।
1: अच्छा।
0: हाँ, वेस्टर्न आउटडोर में एक पियानो था, सब गाने वही हम लोग करते थे। पूरा 7 दिन का स्टूडियो बुक था
1: जी,
0: और जहाँ पे भी स्पोकन वर्ड आता था अनीता कंवर जी बोलती थी और गाने कब आ रही है तो मैं करती थी।
1: बल्कि वो गाना भी है, मैं सुंदर हूँ,
0: बहुत है बहुत, क्योंकि इट वॉज एक्चुअली रेन मेकर का ही हिंदी बना था
1: जी। तो अगर हमारे श्रोताओं ने थोड़ा सा रूमानी हो जाए नहीं सुना हो तो वो जरूर सुने, और खासतौर पर धार धार बरसे, तार तार बरसे।

0: काल की ये रचनाएं, और त्रिकोण का चौथा कोण के बारे में बताइए।
1: त्रिकोण का चौथा कोण में एक दिलचस्प बात ये कि मैंने महान हिंदी कवियत्री महादेवी वर्मा जी की कविता और माया गोविंद जी का गीत भी गाया था।
0: कैसे उनको पाऊं वाली, ये आपने गाया था।
1: जी जी।
0: इसके अलावा टेलीविजन सीरियल्स में जो गाया,
1: काफी कुछ 4-5 सीरियल्स में मैं गाई थी, बट जो मुझे खास याद है भारत एक खोज में
0: जी,
1: बनराज भाटिया जी ने मुझे बुलाया था एक खास भजन गाने के लिए, स्वामी विवेकानंद की जो एपिसोड था उसमें
0: जी।
1: और उसके अलावा मैंने रघुनाथ सेठ जी और काफी लोगों के लिए मैं ऐसे गाई हूँ
0: जी। छह जी, आपने देश के अलग अलग हिस्सों में आकाशवाणी के लिए संगीत के कार्यक्रम भी आयोजित किए, और जो आकाशवाणी का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होता है उसमें भी आपने गाया है।
1: उस समय सुहासिनी कोरटकर जी थी दिल्ली में, तो उन्होंने मेरा एक कार्यक्रम सुना था टेलीविजन पर।
0: अच्छा।
1: और मैं तब विविध भारती में काम करती थी, तो अचानक उनका फोन आया, और उस समय मैं उनको कभी मिली नहीं थी
0: जी।
1: तो उन्होंने फोन किया और कहा कि छाया मैं कल आपको सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं चिट्ठी भेज रही हूँ, तुम अपने रिकॉर्डिंग करके भेज देना फॉर नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। तो अभी तक मुझे डेट भी याद है, 5th जनवरी 1995 में ब्रॉडकास्ट हुआ था।
0: क्या बात
1: और
0: है।
1: मेरे स्कूल के जो प्रिंसिपल थे
0: जी,
1: श्री गोकुल चंद्र पाइन, बहुत मुझे एनकरेज करते थे स्कूल में। जब भी मैं पार्टिसिपेट करती थी, गाना गाती थी ना, मुझे कमरे में बुला के कुछ किताबें कुछ ना कुछ वो मुझे देते थे प्राइज जैसा
0: जी।
1: और उस दिन उनका फोन आया आफ्टर नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक, और कहा कि छाया माँ आई एम सो हैप्पी कि मेरा छाया माँ का मैंने गाना सुना।
0: क्या बात है। क्या गाया था आपने नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक?
1: 5 गाने के, क्योंकि 30 मिनट का था
0: जी,
1: तो मैं उसमें काफी सारे गजल भजन
0: अच्छा
1: और काफी कुछ मैं गाई थी
0: जी। छाया जी, आकाशवाणी में काम करने का आपकी शख्सियत पर क्या असर पड़ा है, और एक चीज जो मैं जानना चाहता हूँ कि आकाशवाणी से आपने क्या हासिल किया, क्या पाया, और आपकी इस जीवन यात्रा में आकाशवाणी का क्या महत्व है?
1: आकाशवाणी मेरे लिए एक तीर्थ समान है।
0: क्या बात है।
1: यहाँ काम करते हुए संगीत जगत का बहुत एक्सपोजर मिला, और जो अनुभव अर्जित किया वो तो अनमोल है
0: जी।
1: साथ ही नियमित आय की वजह से फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलने के कारण

0: अभी समझौता करने की नौबत ही नहीं आई।
1: जी बिल्कुल। छाया जी, आज जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं तो आपका अनुभव और आपका दिल क्या कहता है?
0: इनुस जी, मैंने सदा ठाकुर से बस संगीत में जीवन के लिए प्रार्थना की।
1: जी,
0: मेरी संगीत साधना में कभी बाधा ना आए। मैंने जो चाहा उसे पाने के लिए जी जान से मेहनत की और मैंने हमेशा ये महसूस किया कि ईश्वर मुझे मानो उंगली पकड़कर सही लोगों तक पहुंचाते रहे, जो ध्रुव तारे की तरह मुझे राह दिखाते गए। मेरा मन कृतज्ञता से सराबोर है
1: जी।
0: सर्वप्रथम मैं अपने परिवार, विशेषकर माँ, बाबा, दीदी, भाभी और दादा के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे अच्छे संस्कारों का आत्मबल दिया और मुझे मन चाहा जीवन पथ चुनने की स्वतंत्रता दी।
1: बिल्कुल।
0: हर परिस्थिति में चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे। संगीत की दुनिया से जुड़े होने के कारण श्री गिरिजा प्रसाद मुखर्जी यानी गिरिजादा ने हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन किया। ठीक वैसे ही आकाशवाणी के शुरुआती दिनों में मेरी अनुभवी सहकर्मी सरला मिर्चंदानी जी ने जब देखा कि मुझमें दुनियादारी की कोई समझ नहीं, तो अपने आप ही मुझे बड़ी बहन की तरह संभालने लगी। साये की तरह हर जगह मेरे साथ जाती थी, पदोन्नति के लिए मेरा आवेदन पत्र भी खुद ही भर देती थी। मेरे लिए सरला जी गार्जियन एंजल की तरह थी।
1: क्या बात है छाया जी। संगीत सरिता, मार्केटिंग डिवीजन, इवेंट्स और आर्काइव में आपकी एक टीम थी हर जगह, उसने क्या भूमिका निभाई?
0: संगीत सरिता की असाधारण सफलता में मेरी पूरी टीम का भरपूर योगदान था
1: जी।
0: और गणेश शर्मा का संगीत के प्रति रुझान, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग क्षमता और तत्परता अच्छा कार्यक्रम बनाने में बहुत सहायक रही। वरिष्ठ उद्घोषक कमल शर्मा जी, इंजीनियर प्रेम सदा रंगानी जी और उनके सहायक विनय तलवलकर एवं दिनेश दाबोलकर और वीना राय सिंघानी जी, महेश गोखले, सभी ने अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम किया।
1: बिल्कुल। छाया जी, मार्केटिंग डिवीजन में कई इवेंट्स आपने आयोजित किए, बड़े कामयाब।
0: और बड़े बड़े कलाकार आए, जैसे सोनू निगम, हरिहरन, लेस्ली ल्यूस, कविता कृष्णमूर्ति, शान, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, शंकर महादेवन। उस समय में पूरा ध्यान कंटेंट पर लगा सकी एक एक कारण
1: जी।
0: नूपुर शांडिल्य और गणेश आयर से लगातार मार्केट फीडबैक मिलता रहा और उन्होंने प्रायोजकों और विज्ञापन पक्ष को बखूबी संभाले रखा
1: जी। आपका रिटायरमेंट तो दिल्ली से हुआ था ना छाया
0: जी? 2012 में मैं दिल्ली आर्काइव से रिटायर हुई थी
1: जी,
0: जहां काम करना बहुत संतोषजनक रहा
1: जी जी,
0: क्योंकि हमने गुणी जनों की दुर्लभ सीडीज रिलीज की थी। डीजी श्री लीलाधर मंडलुई ने बहुत प्रोत्साहित किया और हर आयोजन को सफल बनाने में पूरी सहायता की। यानी मैं अपना काम पूरी निष्ठा से करती गई, रियाज करती गई, सीखती रही और बाकी चीजें अपने आप होती गई। ईश्वर की कृपा से ही तो तार से तार जुड़ते गए
1: जी।
0: एक तरफ गुरु मुझे तराशते गए और दूसरी तरफ काम करते करते अनुभव का दायरा बढ़ता गया।
1: बिल्कुल। छाया जी, चलते चलते अपने श्रोताओं को आप क्या सुनाना चाहेंगी?
0: भूपेंद्र मिताली सिंह जी ने मेरे लिए बहुत खूबसूरत कॉम्पोजिशन की थी, उनमें से एक गजल सुनाना चाहूंगी। इस गजल का आखिरी शेर मेरे दिल की बात कहता है।
1: क्या बात है।
0: आरजू है कि मेरे होठों पर नाम उसका ही उम्र भर आए, मंजिलों तक जो मुझको ले जाए जिंदगी में वो हम सफर आए।
1: क्या बात है, क्या बात है। ये मधुबख्शी की गजल है, सुनते हैं।

0: छाया जी, मुझे याद है कि जब आप विविध भारती में थी तो आपके पास एक डायरी हुआ करती थी जिसमें सारा सिस्टमेटिक लिखा होता था कि क्या क्या करना है, कहाँ करेक्शंस करने हैं, कहाँ अनाउंसमेंट्स करने हैं। तो आज यूं लगा जैसे आपकी डायरी के पुराने पन्ने खोले और आपकी पुरानी यादें दोहराई। बहुत अच्छा लगा कि आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आई और इतनी सुंदर यादें हमारे साथ साझा की आपने।
1: यूनुस जी, मुझे बहुत खुशी हुई फिर से आकाशवाणी में आकर। बहुत सारी पुरानी अनमोल यादें ताजा हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद
2: जी। और ये था आपकी याद आती रही आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में सुप्रसिद्ध गायिका छाया गांगुली से यूनुस खान की विशेष मुलाकात। निर्माण सहयोग सोहिता मराठे, प्रस्तुतकर्ता नेहा खरे, विशेष सहाय नूपुर शांडल्य। और ये आज इस प्रोग्राम का लास्ट एपिसोड था, यानी कि आज इसकी समाप्ति होती है। दोबारा जल्दी मुलाकात होगी आप सभी लोगों से यहाँ पर FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़, म्यूजिकली योर्स।
3: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
4: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू,
3: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
4: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
3: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
4: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
3: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
4: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
3: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
4: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
3: इंटरनेट बैंकिंग,
4: मोबाइल बैंकिंग,
3: व्हाट्सएप बैंकिंग,
4: eKYC,
3: NEFT, RTGS,
4: IMPS,
3: कॉस्मोस रुपे और वीजा डेबिट कार्ड,
4: UPI जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
3: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल। FM रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है हिंदी में समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति डेल्सी 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA ने भोजन में मिलावट, अस्वच्छ परिस्थितियों में खाना बनाने तथा प्रतिबंधित वस्तुओं की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 203 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर 102 लोगों को गिरफ्तार किया है और 1,58,00,000 रुपये मूल्य का सामान जब्त किया है। ये कार्रवाई 25 से 31 मई के बीच की गई। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक निजी अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष ICU में बृहस्पतिवार तड़के भीषण आग लगने से कम 3 लोगों की मौत हो गई। एक वरिष्ठ जिला अधिकारी ने ये जानकारी दी। ये घटना जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र स्थित प्रसाद अस्पताल में हुई। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहुल खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करना है। अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 पर। इस समय ठीक 11:02 हुए हैं और ये समय होता है प्रोग्राम ब्रेक

अफ्रीका। मैं हूं आरजे किरण माला से, मैं आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब और तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गाने के साथ।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: जी हाँ, समय ठीक 11:15 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 पर। तो दोस्तों, शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जिसने अपनी जिंदगी में कभी हार, निराशा या असफलता का सामना ना किया हो। हम सभी ने अपनी जिंदगी में ऐसा समय देखा है। कभी कभी ऐसा भी लगा होगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तब एक शब्द याद आता है, आशा, उम्मीद। अंग्रेजी में कहते हैं होप। ये शब्द बहुत ही खूबसूरत है। चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, ये एक दीपक की तरह काम करता है। अगर इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के जरिए हमसे कह सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071।

जी हाँ, समय ठीक 11:22 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। तो आप सभी ने मार्टिन लूथर किंग का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने कहा है, हमें सीमित निराशा को स्वीकार करना चाहिए लेकिन असीमित आशा को नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब साफ है कि हम अपनी निराशा को सीमित करके रखें, उसे अपने ऊपर हावी न होने दे और आशा का दामन कभी ना छोड़े। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वो उम्मीद से ही होता है। एक स्कॉलर ने तो ये भी कहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बुरी चीज़ों का सामना करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छे की आशा करना कभी नहीं छोड़ता।

0: रिस्पॉन्स डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग
0: मोबाइल बैंकिंग
1: व्हाट्सएप बैंकिंग
0: ईकेवाईसी
1: एनईएफटी आरटीजीएस
0: आईएमपीएस
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ
2: कॉस्मोस मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
3: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

जी हाँ, समय ठीक 11:35 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय ठीक 11:36 हुए। लाइफ को ब्रेक फ्री बनाने के लिए आशा या उम्मीद बहुत ज़रूरी है। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खराब से खराब हालत में भी आशा का दामन नहीं छोड़ा। साल 2019 में एक फिल्म आई थी सुपर 30। इस फिल्म में पटना में रहने वाले गणित के अध्यापक आनंद कुमार के जिंदगी को दिखाया गया। उन्होंने अपनी जिंदगी में कितनी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन आनंद कुमार ने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी गई। हम कह सकते हैं कि उनकी जिंदगी ब्रेक फ्री लाइफ है, वो हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। अगर आपने सुपर 30 फिल्म नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मो कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जी, आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 पर, और मैं हूं RJ किरण माला आपके साथ। साल 2023 में एक फिल्म आई थी, 12th फेल। ये फिल्म बहुत पसंद की गई। फिल्म का मुख्य पात्र मनोज 12वीं की परीक्षा नकल करके पास करना चाहता है ताकि उसे एक चपरासी की नौकरी मिल जाए, लेकिन वो फेल हो जाता है। बाद में उसकी सोच बदलती है। वो सोचता है कि अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। वो खुद को एक और मौका देता है। वो खूब पढ़ लिख कर मेहनत करके UPSC की परीक्षा पास करता है और एक IPS ऑफिसर बन जाता है। ये फिल्म IPS ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा की जिंदगी पर आधारित थी, यानी 12वीं क्लास में फेल होने के बाद IPS ऑफिसर बनना। क्या बिना आशा या उम्मीद के कोई इंसान ऐसा कर सकता है?

जी आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय ठीक 11:56 हो रहे हैं। तो यहाँ पर श्रोता हैं हमारी सुबलक्ष्मी जी, वो लिखती हैं कि मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ क्योंकि एक पॉजिटिव विचार 10 नेगेटिव विचारों को भगा देता है। जी हाँ, बहुत बहुत अच्छा लिखा है आपने। और ऐसे एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है, आपने बिल्कुल सही कहा, उम्मीद और आशा के बिना जीवन नहीं चल सकता है। लिखते हैं नितिन स्वामी एरोली से। और हमारे साथ बहुत सारे श्रोता हैं जो इस समय हमें सुन रहे हैं। राजेंद्र जुठानी जी हमें सुन रहे हैं कांदीवली से, और पंकज मोहोड़ हैं अशोक पाटिल वर्ली से, बाबा दादर से सुन रहे हैं, विजेंद्र घटोल, सुबलक्ष्मी मस्टकर, प्रणव शिंदे, धनंजय, प्रमोद चिंचोलकर, फिरोज सिंगनपुरिया। तो बढ़ते हैं इस चंग के आखिरी गाने की ओर।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल। FM रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है हिंदी में समाचार। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनिदाद और टेबेको को सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य चुना है। इन देशों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। वे 1 जनवरी 2027 से परिषद में अपना कार्यभार संभालेंगे और 31 दिसंबर 2028 तक सदस्य बने रहेंगे। नवनिर्वाचित देश डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 410 अंक गिरकर 73,935 पर था। निफ्टी में भी 100 से अधिक अंक की गिरावट दर्ज की गई। भारतीय वायुसेना का लड़ाकू हवाई जहाज IAF SU-30MKI का परीक्षण आज नवी मुंबई के हवाई अड्डे पर सफल रहा। मुंबई के नायगांव में BDD चाल पुनर्विकास परियोजना की परियोजना पूरी हो चुकी। बिल्डिंग्स के 537 पात्र लाभार्थियों को कल से उनके फ्लैट्स का वितरण किया जाएगा। महाड़ा ने एक प्रेस रिलीज में कहा है कि फ्लैट्स का वितरण नायगांव दादर में महाड़ा के प्रोजेक्ट ऑफिस में शुरू होगा। अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 पर। मैं हूं आरजे किरण माला। इस समय आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब और तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं कार्यक्रम म्यूजिक कैफे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गाने के साथ।

जी ऐसे में ठीक 12:06 हुए हैं और कार्यक्रम म्यूज़िक कैफ़े की शुरुआत हो गई है। आज इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे सिंगर के बारे में बात करेंगे जिन्हें कभी सलमान खान की आवाज़ भी कहा जाता था, ठीक उसी तरह जैसे मुकेश राज कपूर साहब की आवाज़ हुआ करते थे। आज इनके बर्थ एनिवर्सरी भी है। अगर आप इनका नाम जानते हैं तो व्हाट्सएप के ज़रिए हमें बताएं और साथ ही साथ ये भी बताएं कि इन्हें भारत सरकार ने एक बेहतरीन सिंगर के तौर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से कितनी बार सम्मानित किया है। तो चलिए सुनते हैं एक और गाना इन्हीं की आवाज़ में ताकि आप जल्दी से पहचान जाएं।

जी हाँ, जैसा कि मैंने पूछा कि आज किसकी एक ऐसे सिंगर के बारे में बात करेंगे जिन्हें कभी सलमान खान की आवाज़ भी कहा जाता था, ठीक उसी तरह जैसे मुकेश राज कपूर साहब की आवाज़ हुआ करते थे। तो लगभग बहुत सारे श्रोता है जिन्होंने सही जवाब दिया है। मैं उनके नाम लूँगी इस गाने के बाद, तब तक इंजॉय करते हैं यही गाना।

फिर से रजनीकांत पाटिल, आदर्श कनौजिया दादर से, और प्रणव शिंदे, और एक और श्रोता है जिनका नाम है दुर्गेश मरकाम छत्तीसगढ़ से, और अंजू अंधेरी ईस्ट से, नितिन स्वामी ऐरोली से, प्रमोद चिंचोलकर, ऐसे श्रोता हैं जिन्होंने सही उत्तर दिया है। तो बढ़ते हैं अगले गाने की ओर, लेकिन कुछ बातें कर लेते हैं यहाँ पर। जी हाँ, एसपी बालासुब्रमण्यम 16 भाषाओं में 40,000 से ज़्यादा गाने गा चुके हैं, जिसकी वजह से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ चुका है। चलिए एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाते हैं। 8 फरवरी साल 1981 का दिन था, संगीतकार थे उपेंद्र कुमार। सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक लगातार 12 घंटों में एसपी बालासुब्रमण्यम ने 21 कन्नड़ गाने रिकॉर्ड करवाए थे। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना,
3: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू,
2: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
3: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना, कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
4: आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 पर। मैं हूँ RJ किरण माला, समय आपके साथ। साल 1981 में फिल्म आई थी एक दूजे के लिए। ये पहली हिंदी फिल्म थी जिसके लिए SP बाला सुब्रमण्यम ने गाने गाए थे। इस फिल्म के नायक थे कमल हसन और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस फिल्म के गाने बहुत हिट हुए थे और SP बाला सुब्रमण्यम एक स्टार सिंगर बन गए थे। इस फिल्म के लिए उन्हें भारत सरकार ने एक बेहतरीन सिंगर के तौर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना, और साथ ही हम बता दें कि और भी हमारे श्रोता हैं जैसे वसंत पारुंडेकर डोंबिवली से हमें सुन रहे हैं।

12:37 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। जैसे हम सभी मोहम्मद रफ़ी साहब के आवाज़ के दीवाने हैं, ठीक इसी तरह SP बाला सुब्रमण्यम भी रफ़ी साहब के बहुत बड़े फ़ैन थे। वो रफ़ी साहब के गाने बहुत ज़्यादा सुना करते थे। रफ़ी साहब का गाया हुआ एक गीत सुनकर अक्सर उनकी आँखों में आंसू आ जाते थे। ये फिल्म थे कश्मीर की कली और गाने के बोल थे दीवाना हुआ बादल। वाकई में ये बहुत ही खूबसूरत गीत है और रफ़ी साहब ने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस गाने को गाया था। तो क्यों ना इसी गाने को हम सुन लें, जो कि कभी SP बालासुब्रमण्यम भी बहुत पसंद किया करते थे। तो चलिए सुनते हैं यही गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

इस समय ठीक 12:44 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 पर। 90 के दशक में उन्हें सुपरस्टार सलमान खान की आवाज़ माना जाता था। फिल्म मैंने प्यार किया, साजन और हम आपके हैं कौन जैसी फिल्मों के लिए उन्होंने बेहतरीन गाने गाए। पर्दे पर उनकी आवाज़ सलमान खान को बहुत सूट करती थी। एसपी बालासुब्रमण्यम एक बहुत अच्छे सिंगर और संगीतकार तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ वह एक बहुत अच्छे वॉइस आर्टिस्ट भी थे। एक फिल्म थी दशावतारम, इसके नायक थे कमल हसन। इस फिल्म के

तेलुगु वर्जन में एसपी बालसुब्रमण्यम ने 7 अलग अलग किरदारों के लिए डबिंग की थी, इसके लिए उन्हें बहुत तारीफ मिली थी। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना।

0: सुप्रिय श्रोते हो, तुम्ही आता ऐकत आहात ती अज्ञात मुंबईची वरळीच्या बांधलाची गोष्ट। ह्याच्या पुढच्या भागांमध्ये आम्ही वेगवेगळ्या तुम्हाला माहीत नसलेल्या अशा गोष्टी घेऊन येतोय, म्हणजे राणीच्या बागेची गोष्ट, राणीच्या पुतळ्याची गोष्ट आणि मुंबईतल्या सगळ्यात पहिल्या हॅशटॅग फाईव्ह स्टार हॉटेलची गोष्ट।
1: अज्ञात मुंबई हा कार्यक्रम आपल्याला ऐकायला मिळेल सकाळी 7:45 FM रेनबो वर आणि सकाळी 9 अस्मिता वाहिनीवर
0: आणि एनी टाइम न्यूज ऑन AIR या ऍप वर।
2: कष्टले हे मुंबई घडताना।
3: इस समय ठीक 12:50 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 MHz पर। सांसों के डोर से सुरों को पिरोया है उन्होंने, हर गीत में अपना एक जहां सजोया है उन्होंने। भले ही आज वो हमारे बीच में नहीं है मौजूद, लेकिन उनके गीत बन गए हैं सदाबहार यादें। SB बाला सुब्रमण्यम को बर्थ एनिवर्सरी पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि हम देते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। बहुत ही खूबसूरत शब्दों में लिखा है प्रकाश शिंदे जी ने, तो हम सभी की ओर से उन्हें उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना।

जी समय ठीक 12:55 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। SP बाला सुब्रमण्यम जी को भारत सरकार ने 6 बार बेहतरीन सिंगर के तौर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। 5 बार क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों के लिए, ये फिल्में तेलुगु, कन्नड़ और तमिल भाषा में थी और 1 बार हिंदी फिल्म के लिए, ये फिल्म थी एक दूजे के लिए। तो चलते हैं, सुनते हैं इस चंग का ये आखिरी गाना। बहुत ही खूबसूरत गाना है, बहुत ही फास्ट गाना है ये, मैंने प्यार किया।

जी हाँ, समय ठीक 1:05 हुए हैं और ये समय होता है कार्यक्रम हिट एंड हॉट का। और इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं अपनी पसंद के गाने, तो जल्दी से अपनी पसंद के गाने भेज दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गाने के साथ। इस गाने को पसंद किया है संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, जालंधर से।

जी हाँ, समय ठीक 1:17 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 MHz पर। अभी जो गाना आप सुन रहे थे, यही गाने की रिक्वेस्ट राकेश माथुर पुणे से उन्होंने भी की थी। तो जी हाँ, आपकी फरमाइश भी पूरी हो चुकी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले गाने की ओर। फिल्म का नाम है चांदनी और इस गाने को सुनना चाहते हैं राजेश भलावी, आराध्या भलावी प्रणव, जिला बालघाट से, गाँव गोठी से। तो इस गाने को इनका पूरा परिवार सुनना चाहता है। साथ ही एक और मैं आपको मैसेज बता दूं कि यहाँ पर और हमारे एक श्रोता हैं जिनका नाम है प्रमोद चिंचोलकर जी, वो भी हमें सुन रहे हैं। उनकी सब्जी की शॉप है और साथ ही गाने भी इंजॉय करते हैं और सब्जी भी देते हैं, यानी बेचते हैं। तो जी हाँ, चलिए सुनते हैं ये गाना।

जी हाँ, समय ठीक 1:26 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि यहाँ पर एक हमारे श्रोता है जिनका नाम है प्रमोद चिंचोलकर। तो इनका नाम अक्सर आपने सुना होगा, हम सभी लेते हैं। तो इनसे मेरे भी WhatsApp पे बातचीत हो रही है। वो सुबह घर से निकलते हैं 3 बजे सब्जी लेने के लिए, यानी सब्जी मंडी जाते हैं और वहाँ सुबह सब्जी लेकर आते हैं और 7 बजे से सब्जी बेचना शुरू करते हैं। बहुत मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि पूछो ही मत। और साथ ही हमारा ये जो प्रोग्राम है FM रेनबो पे, जो भी आता है वो सब सुनते हैं, यानी कि वो सही इस्तेमाल करते हैं मोबाइल का। और साथ ही ढेर सारी सब्जियों की तस्वीरें भी भेजिए हमें और पूछ रहे हैं कि क्या ये मुंबई में मिलती है। जी हाँ प्रमोद जी, सारी सब्जियां हमें मुंबई में मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो चलिए बढ़ते हैं अगले गाने की ओर। इस गाने को सुनना चाहते हैं फिरोज सिंगनपुरिया।

जी हाँ, समय ठीक 1:40 हुए हैं, तो चलिए कार्यक्रम हिट एंड हॉट को आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का स्वागत करते हैं कार्यक्रम हिट एंड हॉट में। इस गाने को पसंद किया है दिग्दर्शन और कविता जी ने मेरठ कैंट से।

0: What do you think?
1: अभी जो गाना ये प्ले हो रहा है, इस गाने की फरमाइश की है शुभलक्ष्मी जी ने।
0: Not bad. अब ये सुनो।

जी, समय ठीक 1:52 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं हूँ RJ किरण माला इस समय आपके साथ, और हमारा साथ बना रहेगा ठीक 2 बजे तक, यानी 2 बजने को अब कुछ ही समय बचा हुआ है। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना।

चलिए सुनते हैं इस चंक का ये आखिरी गाना, और इसी गाने के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और साथ ही सुनते रहिए FM रेनबो

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार

0: और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद NEC का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलांग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कहा है

वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ सम्पन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। ये अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है, इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
2: आईसीयू 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है। शॉर्ट सर्किट से कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है। बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी सूची कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जांच कर रहे हैं।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जाएगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरलम में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
3: केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से

0: तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
1: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
2: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम विहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 30,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: भारत के वीर सैनिक सीमाओं की रक्षा और देश की सुरक्षा में सदैव अपने कर्तव्य समर्पण और देश सेवा में निष्ठा से तत्पर रहते ही हैं। साथ ही ग्रीन इनिशिएटिव से लेकर मिशन लाइफ तक जंगल पहाड़ नदी और आकाश की भी हिफाजत में जुटे हैं। प्रोटेक्टिंग द नेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग नेचर, यानी देश की रक्षा प्रकृति की रक्षा। इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ से कैंटोनमेंट बन रहे हैं जीरो वेस्ट जोन, सोलर पावर से चल रहे हैं कैंप और प्लांटेशन ड्राइव से हर सोल्जर बन रहा है एक इको वॉरियर। ये है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन्ड मिशन जिसके लिए हमारी सेना जानी जाती है। और इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को ये इनिशिएटिव और भी सशक्त और भी स्पेशल बन रहा है। भारत की धरती सलाम कर रही है अपने सपूतों को, अपने सैनिकों को। 102.6 देश के नंबर 1 रेडियो आपके अपने आकाशवाणी रेनबो पर आज का विशेष संदेश टू सोल्जर्स भारतीय सेना के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ को समर्पित है, जिसे बड़े दिल से बनाया है टीम रेनबो ने। और आज का ये स्पेशल एपिसोड आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ, और हमारे ओबी टीम मेंबर हैं वैभव श्रीवास्तव। और हमारी रेनबो टीम पहुंची हुई है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी कैंप दिल्ली में। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कमांडेंट गौरांग जैन के संदेश से।
1: तो आज मौजूद है आर्मी हेडक्वार्टर्स कैंप में और हम बात करने वाले हैं यहाँ के कमांडेंट कर्नल गौरांग जैन से। सर, वेलकम टू द शो।
2: थैंक यू, और आपका यहाँ कैंप में आने के लिए और एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए धन्यवाद।
1: सर, जब लोग आर्मी के बारे में सोचते हैं, हम बात करते हैं इंडियन आर्मी की खासकर, तो हमारे जहन में आता है डिसिप्लिन, ड्रिल्स, मिलिट्री ऑपरेशंस, कोवर्ट ऑपरेशंस और ये सब चीजें। तो सर, बॉर्डर्स को सिक्योर करने से लेकर पर्यावरण को सिक्योर करने तक ये बदलाव की शुरुआत कैसे हुई, प्लीज हमें बताइए।
2: देखिए, जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये सिर्फ बॉर्डर की हिफाजत के बारे में नहीं है, इसमें हमारी मिट्टी, जल, वायु सभी इस सुरक्षा के उसमें आते हैं। ये पर्यावरण संरक्षक आज सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक ये हमारे आवश्यकता बन चुकी है, और ये सिर्फ हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। फौज का और पर्यावरण का हमेशा से एक अटूट रिश्ता रहा है। आप जानते हैं कि कैंटोनमेंट हमेशा से ही हरे भरे मिलेंगे आपको, और जो हमारे सैनिक हैं इनमें साफ सफाई रखना, पेड़ पौधे लगाना, ये उनके DNA में है। लेकिन आज सिर्फ साफ सफाई से या पेड़ पौधे लगाने से नहीं होगा, हमें एक पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनानी पड़ेगी और हमें कल्चरली अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हमने मिशन ग्रीन के तहत हमारा डीकार्बनाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अपक्षित मुक्त सैन्य भारत अभियान, जैसे कि जीरो वेस्ट इकोसिस्टम्स को हम बोलते हैं, वो चलाया जा रहा है, और ताकि हम आने वाली पीढ़ी को इसको सुरक्षित कर सके।
1: सर, क्या जीरो वेस्ट मॉडल एक्चुअल में मुमकिन है, क्या इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से हमें बता सकते हैं प्लीज?
2: जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है, और इसके लिए बस हमें थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत होती है। जीरो वेस्ट मॉडल के लिए कुछ मापदंड होते हैं, जैसे कि कोई भी वेस्ट हमारा लैंडफिल में ना जाए, वेस्ट को सोर्स पे ही 100% हम सेग्रीगेट करें, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको 100% हम इन हाउस कंपोस्ट कर सकें, कोई भी वेस्ट हम ओपन बर्निंग में ना करें या इंसिनरेशन ना करा जाए इत्यादि। जैसे मैंने बताया कि अगर ये अपनाना है तो हमें सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, वेस्ट को वेस्ट ना समझे बल्कि उसको हम रिसोर्स समझे। जिस दिन हमने वेस्ट को रिसोर्स समझ लिया, हम उसको फेंकेंगे नहीं, क्योंकि रिसोर्स को हम रखते हैं और वेस्ट को हम फेंकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी सामान आप देखेंगे कि उसको हमने रिसोर्स की तरह समझ के रखा है, तो या तो वो खुद ही हम यूज कर सकते हैं या कोई और, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो रिसाइकल होके कहीं ना कहीं किसी के इस्तेमाल में आ ही जाएगा।
1: सर, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स कैंप किस प्रकार से जीरो वेस्ट में तब्दील किया गया, क्या इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आप हमें समझा सकते हैं प्लीज?
2: जी बिल्कुल, आज जैसा आप जानते हैं पहले जितना भी वेस्ट होता था ये इकट्ठा होकर म्यूनिसिपैलिटी लैंडफिल्स में जाया जाता था, जो फिर कूड़े का पहाड़ बन गया। सो इसके लिए हमने जीरो वेस्ट के लिए सिस्टम तैयार किया। गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार वेस्ट को सोर्स पे ही 4 तरीके से हम सेग्रीगेट करते हैं, जैसे ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, स्पेशल केयर वेस्ट और सैनिटरी वेस्ट। इसके अलावा हमने कोलैबोरेट किया है कई NGO से या संस्थाओं से, जो कि रिसाइकल हमें इन साइंटिफिक तरीके से इसको कर सके। इसके अलावा कई उपकरण भी लगाए गए हैं। तो सब करने से इसका नतीजा ये हो रहा है कि जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो अब 100% हम इन हाउस यानी कि कैंप में ही कंपोस्ट कर रहे हैं, या फिर उसको हम बायोगैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपका किचन का वेस्ट हो गया या हॉर्टिकल्चर वेस्ट। जो ड्राई वेस्ट है जैसे पेपर वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, उनको हम इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद इन संस्थाओं को देते हैं जो वहां पे इनको रिसाइकल करके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स में तब्दील करते हैं, और इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का करते हैं। इसके अलावा अवेयरनेस के लिए हमने कुछ रैक्स लगाए गए, उसको हम वॉल ऑफ काइंडनेस कहते हैं, ताकि जो सामान काम का है लेकिन शायद मेरे काम का नहीं है, उसको रीयूज करने के लिए लोग अपना वहां पे उसको डोनेट करते हैं, जैसे किताब, बुक्स, शूज, बच्चों के खिलौने, बर्तन, वो डोनेट करते हैं और जिसको जरूरत है वो उसको वहां से ले लेता है। सो इन सब छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जो हमने चीजें शुरू करी है यहाँ पे, इससे पिछले कुछ ही महीने में सिर्फ कैंप ने करीब 50 टन से भी ज्यादा वेस्ट को रिसाइकिल कर दिया गया है और लैंडफिल जाने से बचाया गया है। और इसी तरीके से बाकी कई यूनिट और हमारे स्टेशन अब जीरो वेस्ट में इस तरीके से तब्दील हो रहे हैं।
1: कहना होगा कि इनिशिएटिव्स वाकई कमाल के हैं और आई होप कि आर्मी से इंस्पिरेशन लेके बाकी लोग भी इनिशिएटिव्स करें। सर, क्या ये अभियान कैंप को साफ रखने और कचरे को लैंडफिल में जाने से रोकने के लिए है या इसको और आगे बढ़ाने के लिए, आपने क्या सोचा है या क्या कदम उठाए हैं?
2: देखिए, साफ सफाई रखना और लैंडफिल में कचरा ना जाने के लिए ये एक छोटा सा पार्ट है ओवरऑल जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, तो क्योंकि

0: इसमें और भी कई चीज शामिल हो जाती है, जैसे कि हमारे नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना। आपको पता है नेचुरल रिसोर्स एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, चाहे हम पानी की बात करें चाहे हम फ्यूल की बात करें, तो उनको कंजर्व करना। इसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन करना, वृक्ष लगाना, ये भी सारा हमारे पूरे पर्यावरण की तरफ आता है और इन सब चीजों पर भी हम काफी काम कर रहे हैं। अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन पे आऊँ, सबसे पहले फ्यूल कंजर्वेशन, तो उसमें ईवाइजेशन यानी कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैंप में ही आज की डेट में 25 से ज्यादा व्हीकल हमारे इलेक्ट्रिक हो रखी हैं, जिसमें हमारे सैनिक यहाँ पे ऑफिस में जा रहे हैं। सोलराइजेशन का काफी काम चल रहा है, जिससे कि बिजली की खपत कम हो रही है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो हमारा थल सेना भवन बन रहा है वो GRE4 कंप्लाइंट है और एक इको फ्रेंडली मटेरियल से बनाया जा रहा है। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व करने के लिए करीब 100 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, सेंसर लाइट्स लगाई जा रही हैं और वाटर कंजर्व करने के लिए वहां पे इंटीग्रेटेड STP प्लांट, अनेकों वाटर रिसाइकलिंग पिट्स लगा रहे हैं और यही पानी इस्तेमाल किया जाएगा वहां के एबोरिकल्चर को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा वहां पे मेगा कंपोस्ट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, जो कि करीब 1500 kg तक का कंपोस्ट एक दिन में वहां पे कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षक की, तो वो सिर्फ एक पहलू वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच आती है, जो कि एज एन आर्मी और एज अ कैंप हम इसको अपना रहे हैं।
1: आपने एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, होलिस्टिक अप्रोच। मैं पूछूंगा कि इन सभी इनिशिएटिव्स का अल्टीमेट गोल क्या है आपके हिसाब से?
0: देखिए, अल्टीमेट गोल तो यही है कि हम पर्यावरण को किस तरीके से सुरक्षित कर सके, लेकिन साथ में कैसे हम एक डीप रूटेड कल्चरल चेंज यानी कि सांस्कृतिक बदलाव ला सके। हमारे जो जवान हैं, हमारे सैनिक हैं, ये देश के हर प्रांत से आते हैं और यहाँ से उसके बाद वो देश के हर जगह यानी कि बॉर्डर एरिया से लेकर बड़े शहर तक तैनात होते हैं। अगर हम यहाँ पे एक ग्रीन सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं, तो ये हमारे एक ग्रीन एम्बेसडर्स का काम करेंगे। यहाँ पे एक जीरो वेस्ट इकोसिस्टम में है, डेली उठ के ये अपने वेस्ट को सोर्स पे ही सेग्रीगेट कर रहे हैं, प्लांटेशन ड्राइव में हिस्सा ले रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम के जैसे अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। तो जब ये वो यहाँ पे इस चीज को हिस्सा ले रहे हैं, तो ये अब एक इनकी जीवन शैली और एक इनकी आदत बन चुकी है। जब यहाँ से ये पोस्टिंग जाएंगे कहीं पे भी, तो ये अपना माइंडसेट लेके जाएंगे और वहां पे ये सोसाइटी में इस चीज को रेप्लिकेट करेंगे और एक कल्चरल चेंज डेवलप करेंगे।
1: सर, पूछना चाहूंगा कि वाकई एक अद्भुत विजन है और हमें पूरी उम्मीद है कि पर्यावरण संरक्षण में इसमें काफी मदद मिलेगी। एंड आई होप कि ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये रंग लाएं और जैसा आपने कहा कि एक माइंडसेट चेंज हो, ना सिर्फ फौजियों का, सोल्जर्स का, बल्कि पूरे देश का इसके थ्रू।
0: जी, यही हमारा इसके ऊपर कोशिश है, चाहे वो आर्मी हेडक्वार्टर कैंप है और या फिर पूरे इंडियन आर्मी इसके ऊपर लगी हुई है और मुझे यकीन है कि हमें इसमें और आगे बढ़ावा मिलेगा और सोसाइटी में चेंज आएगा। और मैं चाहूंगा कि आप जो हमने यहाँ पे ये चेंजेस ला रहे हैं, जो जीरो वेस्ट कैंप है, जैसे कि ये इंडियन आर्मी का ये पहला जीरो वेस्ट यूनिट है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको जाके देखें और ग्राउंड पे, और हमारे मेजर अजीत मोरे हैं जो इसके प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, तो ये आपको एक बार ग्राउंड पे पूरा इसको दिखाएंगे।
1: साहब, हमसे बात करने के लिए, ग्रीन इनिशिएटिव्स के बारे में बताने के लिए और हमेशा की तरह एक सोल्जर होने के नाते हमें प्रेरणा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: थैंक यू, इट्स अ प्लेजर टू होस्ट यू।
2: जय हिंद। तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: देश की मिट्टी को देश के सैनिकों का सलाम है दिल से। इस गीत के बाद अब हम आज के हमारे संदेश टू सोल्जर के स्पेशल एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स आर्मी कैंप के प्रोजेक्ट ऑफिसर मेजर अजीत मोरे से।
1: हम मौजूद हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स MOD आर्मी कैंप के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जोन में और हमारे साथ फिलहाल हैं प्रोजेक्ट ऑफिसर मेजर अजीत मोरे। सर, स्वागत है शो में। हमें इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बताइए कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं।
2: धन्यवाद, मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। तो मैं बहुत ही गर्व के साथ आपको कहना चाहूंगा, ये हमारे पूरे भारतीय सेना का पहला जीरो वेस्ट कैंप है। भारतीय सेना की हर एक यूनिट, हर एक इकाई जहाँ भी मौजूद है वो इसी तरीके से इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रही है। जब गवर्नमेंट के गाइडलाइंस मिले थे तो उसके अनुसार हम यहाँ पे वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, जैसे कि ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट, इसको हम यहाँ पे सेग्रीगेट करते हैं। मतलब मुद्दा यह है कि वेस्ट को उसके सोर्स पे ही 100% रिसाइकल किया जाए। साथ ही साथ में जब ऑर्गेनिक वेस्ट या वेट वेस्ट की हम बात करते हैं तो इसमें हम एरोबिक्स लगाए हैं, जिसको एरोबिक से हम खाद बनाते हैं, और साथ में बायोगैस लगाया गया है। बायोगैस कंपोजिट सिस्टम से हम इसको कुकिंग हाउस में इस्तेमाल करते हैं। ड्राई वेस्ट में प्लास्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, ई वेस्ट और टेक्सटाइल वेस्ट लगाया गया है, तो इसके द्वारा भी हम इसको रिसाइकल्स को आगे देते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, वेस्ट इज नॉट अ वेस्ट, इट इंडिफिनिट रिसोर्सेस। इसको मैं एग्जांपल के तरीके से आपको समझाना चाहूंगा। समझ लो मैंने किसी भी दुकान से आज चिप्स का पैकेट खरीद लिया, चिप्स मैंने खा लिया, रैपर फेंक दिया, तो रैपर मेरे लिए तो वेस्ट है। साथ ही साथ में मैंने केला खरीद लिया, केला खा लिया और उसका छिलका फेंक दिया, दोनों चीजें मेरे लिए वेस्ट है। अगर मेरे जैसे किसी समझदार इंसान ने उसको दोनों को इकट्ठा करके फेंक दिया, वो प्लास्टिक कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा, वो धरती की हानि पहुंचाएगा। वो केला भी मैंने कहीं और फेंक दिया, कोई उस पे फिसलेगा, गिरेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई समझदार इंसान है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, प्लास्टिक को मेरे प्लास्टिक वेस्ट में डाल दिया और उसको रिसाइकल कर दिया और उसको ब्यूटीफुल इक्विपमेंट्स में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वही केले के छिलकों को हमने खाद के एरोबिक्स में डाल दिया और उससे हमने खाद बनाई जो नेचर को आगे प्रोटेक्ट करती है। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, वेस्ट इज द ओनली वेस्ट इफ यू वेस्ट इट।
1: थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए।
2: धन्यवाद।
0: हमने सुना कैसे पूरी डिटेल में मेजर अजीत मोरे ने ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ के बारे में बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक एक करके जानते हैं।

0: हैं पूरे मिशन के बारे में। तो सबसे पहले बात एरोबिन कंपोस्टिंग की, जिसके बारे में बता रहे हैं हवलदार राजकुमार।
1: तो बात चल रही थी आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स की। हम यहाँ फिलहाल मौजूद हैं एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के पास और हमारे साथ मौजूद हैं हवलदार राजकुमार जी। सर, हमें एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के बारे में प्लीज बताइए।
2: मैं आपको ऑर्गेनिक यानी के बेड बेस्ड के बारे में बताऊंगा। किचन और हॉर्टिकल्चर को मैनेज बेस्ड करने के लिए हमने कुक हाउस में एरोबिन सिस्टम और बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल किया है। एरोबिन के अंदर हम वेजिटेबल बेस्ड, फ्रूट बेस्ड, सूखी पत्तियां और बिना पका हुआ किचन बेस्ड को डालते हैं, जो कि 20 से 30 दिन में रिसाइकल होकर खाद बन जाती है। इस खाद को हम एरोबिन से निकालते हैं, जो कि 2 से 3 दिन सूखने के बाद इसको हम एक अच्छी क्वालिटी में खाद दर्शाई गई है। पूरी तरह से खाद तैयार होने के बाद इस तरह से खाद निकलती है, इसको आप पैकिंग भी कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से पर्यावरण फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें ना ही बिजली और ना ही किसी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। कैंप में अब तक सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर इसे हमने 750 केजी खाद को तैयार किया है।
1: हवलदार राजकुमार जी, इसकी कैपेसिटी कितनी है और कितने दिन में खाद बन जाती है?
2: इसकी कैपेसिटी 400 केजी की होती है। इसे हर दिन 20 से 25 केजी बेस्ट डाला जाता है, जो कि 20 से 25 दिन के अंदर कंपोस्ट यानी कि खाद तैयार हो जाती है।
1: साहब, एक और बात बताएं हमें, ये जो एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम है, इसको इस्तेमाल में लाने के लिए और क्या मिलाया जाता है?
2: इसको ड्राई रखने के लिए इसके अंदर सूखी पत्ती डाली जाती है। इसके अंदर किसी भी केमिकल की जरूरत नहीं है, ये बायोलॉजिकल काम करता है।
1: सर, आपने हमें एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के बारे में इतनी जानकारी दी, हमें बताया कि किस तरीके से खाद बनती है और बिना केमिकल्स को यूज किए बनती है। ये ग्रीन इनिशिएटिव है, मेड इन इंडिया इनिशिएटिव है। साथ ही साथ आप देखिए कि अगर इस तरीके के सिस्टम्स पूरे देश में इंस्टॉल किए जाएं, आर्मी से सीख ली जाए किस तरीके से हम वेट वेस्ट को, जैसा कि हमें प्रोजेक्ट ऑफिसर ने बताया था कि हम किस तरीके से वेस्ट को वेस्ट ना रखकर उसको एक एसेट में तब्दील कर सकते हैं, इसे कहते हैं वाकई वेस्ट से एक एसेट बनाना। थैंक यू सो मच।
0: अभी हमने जाना एरोबिन कंपोस्टिंग के बारे में। श्रोताओं, हम आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे हम कि कैसे बायोगैस प्लांट लगा करके हमारी आर्मी कैंप में किचन मेंटेन किया जा रहा है, और इस बारे में डिटेल में बता रहे हैं हमें हवलदार राजकुमार।
1: भारत में नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो दशकों और न जाने कितने वर्षों से होता आया है, लेकिन जिस तरीके से आर्मी इसे इस्तेमाल करती है और जिस तरीके से इसके नए प्रोसेसेस को सबके सामने रखा जाता है, ये वाकई अद्भुत है, अद्वितीय है। अभी फिलहाल हम आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स की एक और बात करते हैं, जहां पर हम फिलहाल बायोगैस मशीन और बायोमेथनाइजेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। इसके बारे में हमें और बताएंगे हवलदार राजकुमार जी। सर प्लीज।
2: एलपीजी की खपत को कम करने के लिए हमने कुक हाउस में बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल कर रखा है। इसके अंदर हम मेस में बचा हुआ खाना जैसे कि पानी गर्म, दूध उबालना, अंडे उबालना इत्यादि कामों में इस्तेमाल करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, बायोगैस को अपनाना बल्कि आत्मनिर्भरता बनना ही नहीं बल्कि अपनी धरती को हरा भरा रखने में भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए वेस्टेज को फेंके ना, उससे ऊर्जा बनाए।
1: तो बायोगैस इनिशिएटिव एक और ग्रीन इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी का, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से कचरा यानी वेस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस तरीके के इनिशिएटिव से आप क्या कर सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं या हमारा देश क्या कर सकता है, वो ये है कि हम इस तरीके के इनिशिएटिव से वेस्ट को कम करके उन सभी एसेट्स को अपने पास इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सभी रिसोर्सेस की बाहरी खपत को कम करके अपने ही आसपास की चीजों को इस्तेमाल करके रिसोर्सफुल बनकर हम वो सभी एसेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो रिसोर्सेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। हवलदार राजकुमार जी, हमें प्लीज बताइए कि इसमें एक दिन में कितना वेट वेस्ट डाला जाता है और इससे कितनी गैस उत्पन्न होती है?
2: जी हाँ, ये प्लांट की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। हमारे पास जो प्लांट लगे हुए हैं, इसमें एक दिन में 20 से 22 केजी वेस्ट डाला जाता है, जो कि 3 से 4 गैस को प्रोड्यूस करके इसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं।
1: इसको इस्तेमाल करने से कितने एलपीजी की बचत होती है, कितने सिलेंडर्स की बचत होती है, अगर आप हमें बता पाए?
2: ये भी प्लांट की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। हमारे कुक हाउस में जो प्लांट लगे हैं, इसमें हर एक प्लांट से एक महीने में 4 से 5 एलपीजी सिलेंडर की बचत होती है।
1: और सर, इसको कितनी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, इसमें क्या क्या चीजें लगती हैं, अगर आप हमें बताएं?
2: जी, सबसे इसकी खासियत यही है कि प्लांट को मेंटेनेंस करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास प्लांट लगा हुआ है तकरीबन 6 महीने से लगा हुआ, अभी तक इसकी कोई भी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ी।
1: बायोगैस प्लांट है इंडियन आर्मी का एक और ग्रीन इनिशिएटिव, जिसमें हम वेस्ट से बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। एलपीजी सिलेंडर्स, 4 से 5 सिलेंडर्स की खपत जितनी होती है, उतना हमें प्रोड्यूस यहां से इस मशीन से मिलता है।
0: तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: देश पर जान न्यौछावर करने वाले हमारे जवान सरहद और देश के भीतर ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं यूज्ड कुकिंग ऑयल को कैसे फिर से इस्तेमाल में लाया जा रहा है और इस बारे में जानकारी दे रहे हैं सूबेदार मेजर वरिंदर कुमार।
1: यूज कुकिंग ऑयल के बारे में हम सब जानते हैं, इस ऑयल को अगर बार बार इस्तेमाल किया जाए तो ये सीरियस इंजरी सीरियस हार्म दे सकता है ह्यूमन बॉडी को। इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक जबरदस्त ग्रीन इनिशिएटिव है किस तरीके से यूज कुकिंग ऑयल को इस्तेमाल किया जाए, घर घर से इकट्ठा किया जाए। इसके लिए हमारे साथ हैं सूबेदार मेजर वरिंदर कुमार जी। सर हमें प्लीज इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में प्लीज बताइए।
2: सर जैसे कि FSA की गाइडलाइन के अनुसार जो भी हमारा कुकिंग ऑयल है उसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे काफी सेहत के ऊपर भी असर डालता है, इसे कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसी को देखते हुए हमने इसको अलग करके जो भी हमारा कुकिंग ऑयल जो था इसको यूज है उसको हम अलग करके किसी रिकॉग्नाइज्ड संस्था को देते हैं ताकि उसकी रिसाइकल कर इसका बायोडीजल या सोप बनाया जा सके। इसको कलेक्शन करने के लिए हमने अलग अलग इसके लिए ड्रम्स जो कैंस रखे हुए हैं ताकि उसको सही तरीके से उसको डिस्पोज कर सके और इसको हम आगे डिस्पोज ऑफ कर सके। सर
1: थैंक यू सर हमें यूज कुकिंग ऑयल के बारे में बताने के लिए धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
0: अभी तक हम जान रहे थे वेट वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कि कैसे गीला कचरा रिसाइकल किया जा रहा है या अगर यूं कहें कि ये कचरा अपसाइकल किया जा रहा है। अब बहुत अहम और हमारी जिंदगी पर असर डालने वाला प्लास्टिक वेस्ट, इसे कैसे अपसाइकल करके फिर से यूजेबल बनाया जा सके जबकि प्लास्टिक के बारे में आम धारणा है कि ये कभी खत्म नहीं होता, इसकी जानकारी दे रहे हैं हवलदार अब्बास।
1: इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स को हम आगे ले जा रहे हैं। फिलहाल हमने वेट वेस्ट की बात की, हमने यूज कुकिंग ऑयल की बात की, अब हम बात करेंगे प्लास्टिक वेस्ट की, अब हम बात करेंगे ड्राई वेस्ट की। हमारे साथ हैं हवलदार अब्बास जी। सर हमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में प्लीज बताइए कैसे ये कचरा इकट्ठा किया जाता है, किस किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, कैसे आप इसको यहाँ पर रखते हैं और उसके बाद क्या होता है प्लीज।
3: सभी को मेरा जय हिंद। प्लास्टिक आज के गंभीर विषय बन चुका है, हमारी कोशिश यही है कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। फिर भी जो प्लास्टिक जनरेट होकर हमारे पास आता है उसको सही से डिस्पोज कैसे करें, इसके लिए हमारे कैंप की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिसके दौरान हमारे ब्लॉक्स लिविंग एरियाज कैंटीन एरियाज में हमने प्लास्टिक कलेक्शन पॉइंट्स को इंस्टॉल किया गया है। वहां से ये प्लास्टिक सेग्रीगेट होके हमारे इस मेन कलेक्शन पॉइंट पे लाया जाता है। इसमें प्लास्टिक के बोतल, पैकिंग मटेरियल, दूध की पन्नियां, नमकीन पैकेट्स, यहां से ये सारा मटेरियल वेस्टेज मटेरियल मान्यता प्राप्त एजेंसीज में भेजा जाता है रिसाइकलिंग के लिए। इससे वहां पे फर्नीचर बनाया जाता है जैसे टेबल चेयर बेंच कबर्ड, इसमें डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और इनका इस्तेमाल हम पब्लिक प्लेस पे किया जाता है ताकि लोगों को मोटिवेशन और अवेयरनेस मिले। जैकेट ग्लेशियर्स में डिप्लॉय हमारे सोल्जर

0: वर्कर्स द्वारा इकट्ठे किए गए प्लास्टिक मटेरियल के वेस्टेज से बनाई गई है, जो दर्शाती है कि आर्मी न खिलिफ रागिस्तानों में बल्कि ग्लेशियर्स में पर्यावरण को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही है।
1: हवलदार अब्बास जी, मुझे ये भी बताइए कि रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर नॉर्मल फर्नीचर के मुकाबले कैसा होता है? अगर एक नॉर्मल फर्नीचर की बात की जाए और ये जो रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर है इसकी बात की जाए, दोनों का कंपैरिजन कैसा है, कितना मजबूत है, हम सभी लिसनर्स को बताइए।
0: ये नॉर्मल फर्नीचर से बहुत ज्यादा अच्छा है, ये मजबूत है, धूप बारिश इस पे कोई असर नहीं पड़ता है और ये देखने में भी अट्रैक्टिव है और साथ में कंफर्टेबल भी है।
1: सर, क्या ये रिसाइकल प्रोडक्ट्स आम लोग भी खरीद सकते हैं, इसके बारे में अगर आप बता पाए?
0: जी हाँ बिल्कुल, ये आप खरीद भी सकते हो और प्लास्टिक के बदले इसको ले भी सकते हो।
1: सर, हर आइटम पर कुछ प्लास्टिक नंबर लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है अगर आप हमें बता पाए?
0: जी, ये जो मार्क 80 केजी का लिखा है ये दर्शाता है कि 80 केजी प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से इस बेंच को बनाया गया है। ये चीज भी दर्शाती है कि 80 केजी वेस्ट को फैलने से रोका गया है।
1: एब्सोल्युटली 80 केजी वेस्ट, आप सोचिए 80 किलो वेस्ट कितना ज्यादा होता है। उस वेस्ट को इकट्ठा करना, उसको रिसाइकल करना, उसको प्रोसेस करना और उसके बाद ये मजबूत फर्नीचर, ये मजबूत बेंच, ये सब चीजें बनाना, कितनी अहम चीज है ये, कितना मजबूत इनिशिएटिव है, कितना फ्यूचर ओरिएंटेड है और कितना ज्यादा सस्टेनेबल है। सर, पब्लिक वेस्ट या प्लास्टिक वेस्ट की अगर बात की जाए, किस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, कितनी चीजें हैं
0: इसमें? डिफरेंट तकरीबन 28 आइटम्स बनाए जाते हैं, जिसमें आप टेबल, कबर्ड, तो बहुत सारी चीजें बनाई जाती है।
1: हमें प्लास्टिक वेस्ट के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच सर।

0: इसी तरह कंधों से कंधे मिलाकर हम अपनी धरती को स्वच्छ और बेहतर बना सकते हैं और प्लास्टिक जैसे खतरनाक वेस्ट को भी अपसाइकल कर रहे हैं। अब बात करते हैं पेपर वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में और इस बारे में बता रहे हैं हमें नायब सूबेदार कुलदीप राज।
1: ड्राई वेस्ट में ही हमने पहले प्लास्टिक वेस्ट की बात की, अब हम बात करेंगे पेपर वेस्ट की। किस तरीके से पेपर्स को इकट्ठा किया जाता है, कैसे वेस्ट पेपर्स को यहाँ पर लाया जाता है और उसके बाद उसको श्रेड किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस के बारे में हमें बताएंगे कुलदीप राज जी। सर प्लीज हमें इस पूरे प्रोसेस के बारे में समझाएं।
2: जय हिंद। पेपर का इस्तेमाल पूरे कैंप में कम से कम किया जाता है, जिससे पेपर और समय दोनों की बचत होती है और एनवायरमेंट में भी फायदा मिलता है, जिससे पेपर का इस्तेमाल कम होता है और पेड़ पौधे कटने से बचते हैं। जो भी पेपर वेस्ट होता है, जैसे कि शटल पेपर, गत्ता, किताबें, रजिस्टर इत्यादि, प्लास्टिक वेस्ट की तरह मान्यता प्राप्त एजेंसी को दिया जाता है और जिससे पेपर, किताबें, डायरी इत्यादि बनाए जाते हैं, जिसे इस्तेमाल में लाया जाता है। रीयूज करने से रिसोर्सेज की कमी और सर्कुलर इकोनॉमी में बढ़ावा मिलता है।
1: तो किस तरीके से डिजिटल इंडिया का एक्चुअल एग्जीक्यूशन यहां पर चल रहा है, तो जैसा कि आपने देखा इंडियन आर्मी की ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक और है प्लास्टिक वेस्ट और वेट वेस्ट के अलावा पेपर वेस्ट को किस तरीके से रिसाइकल और किया जाता है, कैसे मान्यता प्राप्त एजेंसीज तक ये सारे पेपर्स पहुंचते हैं, डिजिटल इंडिया की प्रॉपर एग्जीक्यूशन तो आर्मी हेडक्वार्टर्स कैंप में की जा रही है। डिजिटलाइजेशन के बाद पेपर वेस्टेज या पेपर यूसेज कहें बहुत कम हो चुका है, डिजिटल चीजों का, डिजिटल माध्यम का उपयोग ज्यादा होता है, लेकिन जितने भी पेपर्स इस्तेमाल होते हैं जो जरूरी होते हैं उनको भी रिसाइकल किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
0: एक और वेस्ट जो हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है और वो है ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिससे हमारे मोबाइल, टैबलेट्स, चार्जर्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और भी कितने ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें शामिल हैं। और ये ई वेस्ट भी हमारी धरती के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। और इस ई वेस्ट को कैसे अपसाइकल किया जा रहा है बता रहे हैं हवलदार अशफाक अहमद।
1: ड्राई वेस्ट की ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करते करते अब हम आ चुके हैं एक स्पेशल कैटेगरी वेस्ट की तरफ, जो की है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी ई वेस्ट। बेहद जरूरी चीज जो हम सभी के घरों में मिलती है, छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े, वायर्स, प्लग्स, आप सभी ने देखा होगा, क्या वो सब चीजें ई वेस्ट का हिस्सा है? आइए जानते हैं हवलदार अशफाक अहमद जी से। सर स्वागत है शो में। जितनी भी चीजें हमारे घरों में मिलती हैं, क्या वो सब ई वेस्ट में आती हैं?
3: जय हिंद। हाँ बिल्कुल, वो सारी ई वेस्ट में आती हैं। ई वेस्ट एक अत्यंत गंभीर समस्या बन चुकी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ई वेस्ट की समस्या भी बढ़ती जा रही है। इसके लिए कैंटोनमेंट, RWAs और ऑफिस एरियाज में ई वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स को एस्टेब्लिश किया गया है, जो कि स्पेशल केयर वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। इसमें न सिर्फ ऑफिस एरिया के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बल्कि जवान अपने घरों से भी बैटरी, चार्जर, बल्ब जैसे इत्यादि

0: लाके इसमें डाल सकते हैं। तो आप ई वेस्ट बॉक्स है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं, ये जवानों ने अपने घरों से लाके इसमें डाला हुआ है। इस ई वेस्ट को मान्यता प्राप्त एजेंसीज के सेग्रीगेशन प्लांट्स में भेजा जाता है, जहां पर उन्हें साइंटिफिक तरीके से रिसाइकल करके उनमें से सिल्वर, कॉपर, अल्मीनियम जैसे एलिमेंट को निकाल के दोबारा से उपयोग में लाए।
1: बिल्कुल, मतलब ग्रीन मेटल्स को हार्वेस्ट किया जाता है। इस सभी ई वेस्ट का उपयोग करके हम इन ग्रीन मेटल्स को निकालते हैं, इनको बनाते हैं, और उसके बाद इसका दोबारा से इस्तेमाल होता है। ग्रेट इनिशिएटिव, एक्सीलेंट इनिशिएटिव। सोचिए कितना ज्यादा कचरा हम घरों से, बाकी जितनी भी चीजें हैं वहां से इकट्ठा करके यहां पर लाते हैं, और उसके बाद इससे कुछ और उपयोगी, कुछ यूजफुल बनाते हैं। एक्सीलेंट इनिशिएटिव आई वुड से।

0: एनर्जी को प्रमोट करने के लिए हमारी इंडियन आर्मी कन्वेंशनल फ्यूल को नहीं बल्कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रही है। इसके बारे में बता रहे हैं हवलदार आशीष जी।
1: जय हिंद, मैं हवलदार आशीष। एनर्जी कंजर्वेशन वेस्ट मैनेजमेंट की तरह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ग्रीन इनिशिएटिव्स को प्रमोट करने के लिए और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और सोलराइजेशन यानी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय सेना में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ऑलरेडी इनमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हमारे पास आर्मी हेडक्वार्टर कैंप में 25 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का एक फ्लीट है जिनका इस्तेमाल डिपार्टमेंटल ट्रांसपोर्ट और इंटरनल मोमेंट्स के लिए किया जा रहा है। एक इलेक्ट्रिक कार्स का एक फ्लीट है, साथ ही हाइड्रोजन बस और इलेक्ट्रिक बसेस का एक फ्लीट नजर आ रहा होगा, साथ एक इलेक्ट्रिक रिक्शो रखा हुआ है। इनके चार्जिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं जहां पे इन व्हीकल्स को चार्ज किया जाता है। एक व्हीकल को फुल्ली चार्ज होने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है और एक फुल्ली चार्ज्ड व्हीकल तकरीबन 300 किलोमीटर की एवरेज देता है। ऐसा करने से हम मंथली तकरीबन 4000 लीटर और ईयरली 48000 लीटर तक तेल की बचत कर रहे हैं। इन इनिशिएटिव्स को और इन व्हीकल्स को यूज करके हम न सिर्फ अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को बचा रहे हैं बल्कि अपने एनवायरनमेंट को भी साफ सुथरा रख रहे हैं।
0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के हमारे ग्रीन इनिशिएटिव मिशन लाइफ स्पेशल एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और अब बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव के बारे में जानते हैं जो इमोशनली भी बहुत रिलेवेंट है और वो है वॉल ऑफ काइंडनेस। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें पुराने कपड़े, किताबें और यूनिफॉर्म शामिल हैं। हमारे फौजी भी अपनी यूनिफॉर्म के साथ भी इमोशनली अटैच्ड होते ही हैं। तो कैसे डिग्निफाइड वे में इन्हें डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, बता रहे हैं हवलदार विनोद कुमार और राइफलमैन दिनेश कुमार।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, आर्मी और ह्यूमैनिटी, ये दोनों शब्द हम सिनोनिम्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन आर्मी के ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स इतने हैं जिन्हें गिनवाया जाए तो शायद ये दिन ये रात सब कम पड़ जाए। हम ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करने आए थे लेकिन यहाँ पर इनिशिएटिव्स के साथ साथ जो पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है उसी के साथ साथ एक ऐसा इनिशिएटिव भी है जो काइंडनेस को और ज्यादा दर्शाता है। कैबिनेट है ये 155 किलो प्लास्टिक को इस्तेमाल करके बना है। सोचिए 155 किलो प्लास्टिक अब सड़कों में या कचरे के डिब्बों के आसपास नहीं बिखरा हुआ है, उसको इस्तेमाल करके ये शेल्फ बनाया गया है। ये अपने आप में एक जबरदस्त ग्रीन इनिशिएटिव है जिसके बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं और इसके साथ साथ This is actually a wall of kindness, which means donate what you can, take what you need. मतलब अपनी मर्जी से आप डोनेट कर सकते हैं और जो भी जरूरत है वो आप यहां से ले जा सकते हैं। Amazing initiative, ऐसा एक काम जो इंडियन आर्मी ही सोच सकती थी, इंडियन आर्मी ही कर सकती थी। आइए इस wall of kindness के बारे में हम और कुछ जानते हैं। हमारे साथ हैं हवलदार विनोद कुमार जी। सर, स्वागत है शो में। प्लीज हमें wall of kindness के बारे में कुछ बताइए।
3: जय हिंद, आज मैं आपको wall of kindness के बारे में परिचित करवाऊंगा। wall of kindness यानी नेकी की दीवार, ये एक सोशल सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट है जो कि रीयूज के कंसेप्ट को प्रमोट करता है। हमारे यहाँ काफी सारे लोग आते हैं जो कि अपने साथ घर में पड़ा एक्स्ट्रा सामान, जो कपड़े, जूते, किताबें, जहाँ यूनिफॉर्म, वो सब इधर डोनेट करते हैं। बुक्स की शेल्फ है और यूनिफॉर्म की, कपड़ों की, जिस अलमीरा में ये डोनेट करके जाते हैं और जहाँ से जरूरतमंद लोग जहाँ से उठा के बिना किसी हिचकिचाहट के ले जाते हैं। और बेसिकली हमारा उद्देश्य है कि चैरिटी नहीं बल्कि डिग्निटी के साथ जहाँ से सामान ले जा सके। बाकी अभी तक डेटा के अनुसार 10 टन से 12 टन तक कपड़े जहाँ से डोनेट हुए थे और काफी सारा सामान जरूरतमंद लोगों को दिया जा चुका है।
2: सो वॉल ऑफ काइंडनेस के साथ साथ एक और शेल्फ है जिसमें ट्राई सर्विसेज यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की यूनिफॉर्म्स हैं। क्या इसके बारे में और बता सकते हैं?
3: देखिए, अभी आपने सारे रैक्स देख लिए, अभी ये लास्ट में मैं बताता हूँ यूनिफॉर्म रैक्स। इसमें हम तीनों सेनाओं के यूनिफॉर्म रखते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। देखिए, फौजी आदमी के लिए सबसे बड़ा प्राइड होता है उसकी यूनिफॉर्म, ये हमारे इमोशन को टच करती है और दूसरा ये हमारा प्राइड है। हम चाहते हैं इसका सही तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए, इसलिए हम इसे रिस्पेक्टफुल तरीके से इनको जहाँ रखते हैं तीनों सेना की यूनिफॉर्म को।
0: बता रहे हैं राइफल मैन दिनेश कुमार।
3: वॉल ऑफ काइंडनेस में अभी तक कपड़े, यूनिफॉर्म, इसके अलावा जहाँ पर बुक्स भी है। अभी हाल फिलहाल में एग्जाम खत्म हुए थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक जिन लोगों ने अपने एग्जाम खत्म किए उनके बुक्स जहाँ पर काफी डोनेट की गई हैं और ये सभी डोनेट सामान जरूरतमंद लोगों के काम आएगा। और इसके अलावा अब जहाँ और भी बहुत सारी बुक्स हैं जैसे जेई, नीट, सीरियस और SSB, सभी तरह की बुकें आपको देखने को जहाँ मिल जाएंगी। और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जितने भी फोर्सेस हैं, आर्मी, आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो अफसर जवान वो अपने बच्चों के खिलौने किताबें ये सब जहाँ पर डोनेट करते हैं।
0: हमारे फौजी भाई कई बार डिफिकल्ट टेरेन्स में पोस्टेड होते हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी इजिली अवेलेबल नहीं होती है। ऐसे में हमारी आर्मी ने सोलर एनर्जी का प्रयोग कर डेवलप किए हैं सोलर हट्स और सोलर सिक्योरिटी चेक पोस्ट, जिसमें सोलर पावर से चलने वाले कई तरह के डिवाइसेस प्रयोग में लाए जाते हैं। आइए जानते हैं आर्मी के इस इनिशिएटिव के बारे में।
4: जब हम सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो सबको पता है सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हम नेचुरल सनलाइट को इस्तेमाल करके सोलर हट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिसको हमने बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस में लगाया जिससे आने वाले कम्प्यूटर्स इसका बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पूरा सोलर पावर्ड है जिसमें चार फैंस की सुविधा दी गई है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, वायरलेस चार्जिंग पॉइंट और साथ ही साथ में अगर हम चाहे तो रिकॉर्डिंग सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की भी इसमें क्षमता है। सोलर हट तो आपने देख लिया, अभी आपके सामने दर्शाई गई है सोलर संतरी पोस्ट। जैसे कि हम सभी जानते हैं आर्मी देश के विभिन्न विभिन्न भागों में डिप्लॉयड है, जैसे जब भी आर्मी रिमोट एरिया में डिप्लॉयड होती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होती है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए हमने इस इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी चेक पोस्ट को बनाया गया है। जैसे इसके अंदर एक फैन की सुविधा दी गई है जो गर्म और ठंडी हवा भी देता है, साथ ही साथ में इसमें मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और एक इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट की भी सुविधा दी गई है। यह एक मोबाइल संतरी पोस्ट है जिसको यहाँ से लेकर हम किसी भी जगह पे डिप्लॉय कर सकते हैं।
2: इंडियन आर्मी देश की सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी कर रही है। आज हमने ग्रीन इनिशिएटिव्स देखे जो इंडियन आर्मी ले रही है, किस तरीके से ई वेस्ट, वेट वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, हर तरीके से कैसे इंडियन आर्मी हमारे पर्यावरण को बचा रही है, फ्यूचर को बचा रही है। यहाँ पर हेडक्वार्टर कैंप आर्मी में आके हमने सब जाना किस तरीके से आर्मी ये बेहतरीन इनिशिएटिव्स कर रही है और लगातार हमारे फ्यूचर को सेफगार्ड करके सस्टेनेबल तरीके से बेहतर बना रही है। हम इस वक्त प्रोजेक्ट इंचार्ज मेजर अजीत मोरे के साथ हैं। सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आप क्या कहेंगे, ये ग्रीन इनिशिएटिव्स कितने जरूरी हैं, किस तरीके से आर्मी पूरे देश के सामने इस प्रेरणा को रख रही है?
4: थैंक यू वैभव, मैं आपको एक कहना चाहूंगा, जो हमारी सोच है वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ तक ही सीमित नहीं है बल्कि पर्यावरण सुरक्षा में हम इसको कल्चरल चेंजेस लाना चाहते हैं। जिस प्रोडक्ट पे हम अभी बैठे हैं ये अपसाइकल प्रोडक्ट, हमने एक चौथा पहलू भी इसमें जोड़ दिया है। साथ में आपको कहना चाहूंगा, जब वेस्ट मैनेजमेंट या पर्यावरण संरक्षण की बातें आती है तो इसमें तीन बेसिक ह्यूमन टच पॉइंट्स, एक है इंडिविजुअल, एक है कम्युनिटी और तीसरा है अथॉरिटी, जिसमें आप लोकल बॉडीज होगी, आपके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो जब तक ये इंडिविजुअल के अंदर से नहीं आएगा तब तक हमारा एरिया या हमारा पर्यावरण साफ नहीं होगा। यह आपको मैं जोर देकर कहना चाहूंगा, हमारे देश का हर एक सिटीजन

0: एक बंदा एक पर्यावरण योद्धा है और जब तक उसके अंदर से ये आएगा तभी हम हमारे देश के या हमारे गवर्नमेंट के स्वच्छ भारत अभियान को पूरा कर पाएंगे। तो कल हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस को मना रहे हैं, तो ये हमारे गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है स्वच्छ भारत अभियान, मिशन लाइफ अभियान, इसको सफल बनाने के लिए हम सब देशवासी मिलकर इसको योगदान दें। जय हिंद।
1: तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

देश की रक्षा और प्रकृति की रक्षा दोनों एक साथ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर सेना का संदेश है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर आज का संदेश टू सोल्जर्स भारतीय सेना के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ को समर्पित था, जिसमें जीरो वेस्ट जोन से लेकर सोलराइजेशन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से ई वेस्ट मैनेजमेंट, साथ ही ऑर्गेनिक वेस्ट का साइंटिफिक मैनेजमेंट और बायोगैस के अलावा हमने जाना कि एरोबिन कंपोस्टिंग क्या है और कैसे इससे खाद बनाई जाती है, और ये भी कि वॉल ऑफ काइंडनेस के माध्यम से पुराने कपड़े, जूते, किताबें, बच्चों के खिलौने डोनेट करके रीयूज कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया जा रहा है। हम आशा करेंगे कि इंडियन आर्मी के अपनी धरती और प्रकृति के प्रति इस जज्बे से हम भी प्रेरणा लेकर अपना योगदान अवश्य देंगे और इसे बेहतर, स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की कोशिश करते रहेंगे। आज के संदेश टू सोल्जर्स के इस स्पेशल शो की प्रस्तुतकर्ता थी राजलक्ष्मी और मेरे सहयोगी थे ओबी पर वैभव श्रीवास्तव, और आप सुन रहे हैं मेरी आवाज। मेरा नाम है शाहिद। जय हिंद।

अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंडो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेंडो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर।

वेलकम बैक दोस्तों, 5 बजकर ठीक 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम बात करने वाले हैं भारतीय हिंदी फिल्म जगत सिनेमा के उस सबसे बड़े हॉट टॉपिक के बारे में जो आज गलियारों में ज़बरदस्त चर्चा का जो है मुद्दा बना हुआ है, और वो है मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की 60 साल की उम्र में अपनी ज़िंदगी की एक नई पारी के बारे में। खबरें हैं कि अगले महीने यानी कि 5 जुलाई को अपनी पार्टनर गौरी स्प्रिंट के साथ एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी के बंधन बन सकते हैं। वैसे कहा जाता है कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती दोस्तों, इसलिए तो कहते हैं कि लव यू जिंदगी। और इसी बात पर एक खूबसूरत सी एंट्री होती है खूबसूरत से ट्रैक की।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

अपने ही रंग में रंग देना, खूबसूरत सा ट्रैक आपने सुना। ये ओ रंगरेज श्रेया घोषाल और जावेद बशीर की आवाज़ में 5:22 हो गए हैं और टकटक करती हुई घड़ी की घड़ियाल वाली घंटी ये कह रही है कि आपको अगली टॉपिक के बारे में बताया जाए। वैसे तो टॉपिक क्या है, तो आज़ादी से जुड़ा हुआ टॉपिक है और ये आज़ादी का ये बहुत ही खूबसूरत दिन था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो दिन है थियान मेन स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा इतिहास के पन्नों को अगर पलटें तो 4 जून 1989 यानी कि 1989 को चीन के बीजिंग में थियानमेन स्क्वायर पर लोकतंत्र के समर्थन में एक बहुत बड़ा छात्र आंदोलन हुआ था, जिसे दुनिया थियानमेन स्क्वायर मैस

दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के भैया कहाँ आ गया। वैसे आज की तारीख में भाई से पता ही चलता ना कौन सी गर्लफ्रेंड आपने छोड़ दी, कौन सा बॉयफ्रेंड आपने छोड़ दिया, क्योंकि आज की तारीख में तो कोई ट्रेंड अलग चल रहा है, सिचुएशनशिप चल रहा है भाई साहब। कहीं रिलेशनशिप के नाम पर अलग अलग तरह के शिप बना दिए हैं, जैसे रिलेशनशिप ना हो गई, जैसे कोई रियल लाइफ की शिप हो गई है जो एक जगह से दूसरी जगह क्रूज पकड़ के जाती रहती है। वेल, आज की तारीख में आपने देखा होगा कई सारे जो है स्टैंड अप कॉमेडियन जो है क्राउड वर्क करते हैं, और क्राउड वर्क के अंदर जो है कई सारे लोग कपल ही बन जाते हैं, और कई सारे लोग जो कपल होते हैं वो जाते इसीलिए थोड़े से फेमस वेमस हो जाए। क्या आप किसी भी इस तरीके के स्टैंड अप कॉमेडियन के शो में गए हैं जहां पर आपने देखा होगा कि यार जो आप सोचे गए थे वैसा नहीं हुआ? क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि शुरुआती की एक या दो जो फ्रंट रो और सेकंड रो होती है उसके अंदर जो है भाई साहब वो गिच्ची लेते हैं, मजे लेते हैं। कुछ लोग जाते हैं जानबूझकर फिरकी देने के लिए, और कुछ लोग होते हैं सिर्फ पीछे बैठ के जो है वो आंटी और भाभियों के जैसे पूरे मजे लेते हैं। आप अगर कभी इसकी जगह पर गए हो तो हमें बताइए 8657 6601071 पर, यानी

8657661071 पर, क्योंकि आज 7 से 8 के दरमियान आपके लिए लेकर आ रहा हूं मैं कुछ खास। वेल, लिखने की इस जोश में कुछ लोगों ने कुछ लाइनें लिखी हैं और कुछ लाइनें बहुत ही पॉपुलर हो गई हैं, क्योंकि आज की तारीख में देखिए सबसे बढ़िया बात है कि जब से आप एंटरप्रेन्योर वाली जो है जोन में आए हैं, जिंदगी के अंदर चीज़ें कुछ आसान हो गई हैं। आप घर बैठे बैठे सीक्रेट सुपरस्टार बन रहे हैं, लेकिन उसके लिए भाई साहब मशक्कत करनी पड़ती है, चीज़ें इतनी आसान नहीं है। लोग कहते हैं यूट्यूब पे यूं चुटकियों फेमस हो जाओ, लेकिन क्या आप चुटकियों फेमस हो सकते हो? ना, इतना आसान नहीं है, पर हाँ इतना मुश्किल भी नहीं है। वेल, इतनी पहेलियां क्यों बूझ रहा हूं मैं? 7 से 8 के दरमियान कार्यक्रम होगा हम तुम, जिसके अंदर आज सिर्फ भारतीय हिंदी फिल्म जगत समा यानी कि बॉलीवुड के ट्रिविया ही नहीं होने वाले, आपकी अपने दिल की बात होने वाली है। अगला ट्रैक आपके समक्ष आने जा रहा है बदतमीज दिल, बैनी दयाल की आवाज में।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: म्यूजिकली योर्स में दोस्तों आपका स्वागत है और 6:15 हो गए हैं और आज अंदाजे बयां में नाम जिनका बुलंद है हमेशा हमेशा से, उनका नाम है, हम सभी जानते हैं, फैज अहमद फैज साहब। उन्होंने एक से बढ़कर एक जो है शायरी लिखी है और एक से बढ़कर एक नज़में लिखी हैं। यूं कह सकते हैं कि सबसे अजीम रोमानी और बागी शायर फैज अहमद फैज के नाम होने वाली है। उनकी कलम ने जो इश्क और क्रांति को एक नया मुकाम पहुंचाया है, आज उसी से रूबरू होंगे। उनकी पहली छोटी और बेहद खूबसूरत वानगी से, उनकी पहली वानगी मोहब्बत और दुनिया का गम। फैज साहब लिखते हैं कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मैंने समझा था कि तू तो दरख्शा है हयात। दरख्शा का मतलब होता है चमकदार या फिर रोशन, और हयात यानी कि जिंदगी। फैज साहब यहां पर ये कह रहे हैं कि ऐ मेरे महबूब, अब मुझसे उस पुराने दौर जैसी बेफिक्र मोहब्बत की उम्मीद मत रखना। जब मैं युवा था, यानी कि जब जवान था, तो मुझे लगता था कि सिर्फ तुम मिल जाओ तो मैं पूरी दुनिया को पालूंगा, पूरी दुनिया की खुशियां तुम में हैं। लेकिन जब मैंने दुनिया को करीब से देखा तो जाना कि यहाँ गरीबी, भूख और समाज के और भी बहुत से गम हैं, सितम हैं, जिनके आगे सिर्फ महबूब का होना काफ़ी नहीं है। तो चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत सी गज़ल गुलाम अली साहब की।

దాని నిజ దాని మబ దాని సా మబ దాని సా మబ దాని సా దాని గా గా.

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
2: हर घर

लेकिन तैयार रहिए इसमें आप, नए बहलाओं के साथ कोशिश करूंगा मैं, जो कि कोशिश करूंगा जो अलग होंगे, जो आप लोगों की टेपों में नहीं हो शायद।

वेलकम बैक दोस्तों। आवारा पन ये खूब ज़बरदस्त फिल्म थी। जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तकरीबन 2007 के आसपास की फिल्म है ये, और 29 जून को रिलीज़ हुई थी ये फिल्म, यानी कि इसी महीने में। कहा यह जा रहा है कि अब 14 अगस्त को ये फिल्म का दूसरा पार्ट आने जा रहा है। और अगर बात करें इस फिल्म के पहले हिस्से की, अ बिटर स्वीट लाइफ, एक साउथ कोरियन एक्शन थ्रिलर फिल्म के ऊपर ये फिल्म कह सकते हैं बेस है, या यूं कह सकते हैं कि उससे इंस्पिरेशन थी इस फिल्म में। ये फिल्म ने इंडिया में तो स्ट्रगल किया था, लेकिन पाकिस्तान में फिल्म ने जबरदस्त कारोबार किया था और तकरीबन 8 करोड़ रुपए उस वक्त में कमाए थे। इस फिल्म के अंदर शिवम पंडित का किरदार निभाया था इमरान हाशमी ने, और उन्होंने अपने बालों में एक एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया था, इससे उनके लुक में जो है जबरदस्त बदलाव हुआ। कहा जा रहा है कि अब इनका जो दूसरा हिस्सा है उसके अंदर दिशा पटानी होने वाली हैं इमरान हाशमी के ऑपोजिट में। जहां तक बात करें इस फिल्म के गानों की, आप देख रहे हैं कि हम आज भी 2026 में इस फिल्म के खूबसूरत ट्रैक्स को सुन रहे हैं। अगला ट्रैक आने जा रहा है मर्डर 2 से, ये भी ज़बरदस्त फिल्म है और ये भी सीक्वल था मर्डर 1 का।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं बैक टू बैक एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने इमरान खान, नहीं इमरान हाशमी की फिल्म से। देखिए इमरान खान जो है वो तो अभी शायद कम बैक करने वाले हैं भारतीय हिंदी फिल्म जगत सिनेमा में, जिस तरह से अभी वो एक आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म में आए हैं। वेल हम बात कर रहे हैं आज इमरान हाशमी के खूबसूरत गानों के बारे में। और एक दौर था कि जब ये गाने इतने ज़्यादा पॉपुलर थे कि लोग सीडी के अंदर कैसेटों में भर भर के ये जो है रिपीट पे सुनते थे। इस फिल्म के अंदर इमरान हाशमी ने यानी कि मर्डर के अंदर विलन का रोल किया था, लेकिन इस फिल्म के अंदर उनकी जो परफॉर्मेंस थी उसे इतना ज़्यादा सराहा गया कि उन्हें फिर मेन लीड के तौर पर इस फिल्म के अंदर प्रमोट किया गया। इस फिल्म के अंदर अश्मित पटेल की आवाज़ को डब किया गया था। तारा शर्मा को पहले इस फिल्म के लिए साइन किया गया था, लेकिन इरोटिक सीन होने की वजह से उन्होंने इस फिल्म को छोड़ना ही बेहतर समझा। अगला ट्रैक आपके समक्ष आने जा रहा है, ये भी होने वाला है आशिक बनाया आपने। ये वो दौर है जब सीडियों के अंदर आप गाने भरवाते थे और

हेलो, साउंड चेक साउंड चेक, आपको आ रही है आवाज़? इसका मतलब यह है कि कान की जो दूरियां हैं वो अभी भी बरकरार नहीं हैं। कान की दूरियां करीब आ चुकी हैं, 7:51 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं बैक टू बैक इमरान हाशमी के एक से बढ़कर एक सुपर हिट गाने। और जहां तक बात है दिलनशी की, दिलनशी आपके अंग्रेज़ी शो की आ चुकी है जिसका नाम है एंजेला। और मैं अब आपसे लूँगा विदा ये कहते हुए कि बहुत जल्द आपसे मैं फिर से मुखातिब हूँगा। टिल देन रखिए अपना ख्याल। और जहाँ तक बात थी बिजली की, अब आप जान चुके हैं कि बिजली को कैसे बचाना है और सोलर पावर को कैसे लगाना है। फिलहाल शब्दों के पिटारे को मैं थामता हूँ, लेता हूँ आपसे विदा। गर्मी के अंदर अब पाइए आप छुट्टी बिना किसी कंप्लेन के, लगाइए सोलर पावर। और अगर आप लगाएंगे तो बढ़िया बात है, नहीं तो मैं आपको एक बढ़िया गाना लगा के देता हूँ।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में

0: पहले स्थान पर पहुंची प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष तीन में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
2: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ इंजन है।
0: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या।

0: में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
2: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
1: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
3: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई स्टार्टअप महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
1: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
5: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा। चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
6: अहमदाबाद का एका एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन

0: बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की, दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। और मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and Venezuela review full spectrum of bilateral relations and explore new avenues of cooperation in energy, trade and healthcare. Home Minister Amit Shah asked the chief ministers of northeastern states to focus on AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. World Yogasan Sports Championship begins in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi hopes it will give Yogasan a global sports identity. India launches first flex-fuel passenger vehicle operating on a wide range of ethanol-petrol blends. Southwest monsoon hits Kerala. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Keralam, Karnataka and Tamil Nadu during the next 7 days. And in world boxing rankings, India's Jasmine Lamboria climbs to world number 1, while Priya Ghangas and Vishwanath Suresh enter into top 3. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today held talks with Acting President

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
2: इस चैंपियनशिप के

0: माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ अलका गुर्जर और डॉ सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज मिजोरम के चम्फाई जिले में 9 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई म्यांमा से अवैध रूप से लाई जा रही सुपारी की तस्करी और 970 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय से जुड़े धन शोधन के मामले में की गई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मीन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

चलिए जनाब, बज़्म रंगे महफिल की शुरुआत पहले इस खूबसूरत शाहकार के साथ, क्योंकि अगर साज तरानों का साथ हो तो मौसिकी का रंग कुछ अलग ही रंग नजर आता है।

जी हाँ, साज आवाज और मौसिकी की खूबसूरत रात, जब ये सब मिल जाते हैं ना जनाब, तो अपने आप समा खूबसूरत और रात हम मिजाज हो जाती है। मिजाज ऐसे कि जब आप किसी के मिजाज में अपनापन महसूस करने लगें, जब किसी के रंग में खुद को ढलता हुआ महसूस करने लगें, जब किसी की आँख नम हो और आपको लगे कि शायद आपकी आँखों में भी हल्की सी नमी उतर आई है, और जब कोई खुश हो तो आपको लगे कि मसरत में पूरा जहां झूम रहा है, शायद इसे ही कहते हैं अपनापन। किसी की गुर्बत का एहसास, किसी के साथ रहने का एहसास, एहसासों के नाम अलग अलग हो सकते हैं जनाब। कभी ये दोस्त की सूरत में आता है, कभी हम सफ़र, कभी हम नवा की सूरत में, कभी महबूब की सूरत में, लेकिन आता ज़रूर है। ज़िंदगी के किसी न किसी एक पड़ाव पर आपको ये कमी खलती है, और जब ये कमी मुकम्मल हो जाती है तो लगता है कि ज़िंदगी जन्नत बन गई है। लेकिन उम्मीद का दामन हमेशा कहती हूँ कि थामे रखना है, क्योंकि क्या जाने कल कौन सी खूबसूरत उम्मीद आपके दरवाजे पर आपके लिए खटखटा रही हो। इसलिए अर्ज किया है जनाब कि गमे हयात परेशान न कर सकेंगे मुझे, कि गमे हयात परेशान न कर सकेंगे मुझे, कि आ गया है हुनर मुझको मुस्कुराने का। जी हाँ जनाब, लाइफ यानी ज़िंदगी में अगर यही आप

अपने रद्द अमल रखते हैं तो यकीन मानिए कि किसी भी तरह का गैर अमल या किसी भी तरह का बुरा अमल आप पर असर नहीं कर सकता। आपको चारों जानिब सिर्फ और सिर्फ खुशनुमा और खूबसूरत बातें, यादें, मोहब्बत, रंग, नूर यही नज़र आता है। फिलहाल मुझे तो कुछ और भी नज़र आ रहा है। जी हाँ, हमारे लिसनर्स जो हैं वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराने मेरे पास आ चुके हैं और हमेशा की तरह बेशुमार चाहतों का सिलसिला अपने साथ लेके आए हैं और ये बता रहे हैं कि हाँ, वो भी मेरे साथ इस खूबसूरत शाम में जुड़ चुके हैं। तो कौन है वो जनाब? हमेशा की तरह सौरभ अनेजा तो अपनी मौजूदगी दर्ज करा ही चुके हैं और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजमा कुन्ना और यूपी से फारूक अली खान साहब, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा, यानी विद फैमिली इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो लुत्फ अंदोज सिलसिला है जनाब, इसी तरह जारी रहेगा आपके और मेरे साथ। मैं आपकी मुंतज़िर, मुख्तलिफ बातें लेकर मुसलसल आपके इंतज़ार में बज़्म रंगी महफिल किस शाम को खूबसूरत बनाने के लिए हूँ तैयार। बने रहिए बज़्म रंगी महफिल में अपने दिल की आवाज़ आरजे सबिया नकवी के साथ।

जी हाँ जनाब, मोहब्बत का वजूद अब का नहीं बल्कि सदियों पुराना है। मोहब्बत आज के ज़माने से नहीं बल्कि एक ज़माने से चली आ रही है। इसके किरदार ज़रूर बदल जाते हैं, लेकिन इसकी जो शिद्दत है, इसका जो अकीदा है, इसका जो भरोसा है, इसमें जो वफा की चाशनी है, वो हमेशा कायम रहती है। ज़रूरी नहीं कि मोहब्बत सिर्फ महबूब से की जाए। मोहब्बत के अलग अलग किरदार बदलते हैं और अलग अलग एहसास। कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं जो खुदा हमें देता है और कुछ मोहब्बतों को हम ज़मीन पर अपना आप चुन लेते हैं। इसीलिए तो ये खूबसूरत गाना जो भी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, ये बयां कर रहा था उस रिश्ते को जो हम खून चुनते हैं। जी हाँ, अपने हमसफ़र, अपने हमनवा का रिश्ता। और बाज़ दफ़ा उस रिश्ते में बेहद कामयाब होते हैं और बाज़ दफ़ा शायद कभी कुछ कमी भी रह जाती है। लेकिन हमेशा कहती हूँ कि उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, इसीलिए हमेशा उम्मीद का दामन थामे रखना चाहिए। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खुदा खुश किस्मती से हमें निभाने के लिए तोहफे के तौर पर दे जाता है। खैर, एक शेर अर्ज कर रही हूँ फिलहाल, उसको लुत्फंदोज हुई उस शेर के साथ कि नज़र में नूर बदन पर लिबास रंग लिए, नज़र में नूर बदन पर लिबास रंग लिए, ये कौन आता है खुशबू को अपने संग लिए। जी हाँ जनाब, ज़िंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं जो खुशबुओं को अपने साथ ले आते हैं। ऐसी खुशबू जो इंसान कभी नहीं भुला पाता, ऐसी खुशबू, ऐसा एहसास जिसको ताउम्र इंसान अपने पास रखना चाहता है, ऐसी ही खुशबू है माँ बाप की। जी हाँ, एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही फीलिंगफुल, बहुत ही इमोशन से, जज्बात से भरपूर एक मैसेज हमारे पास आया है, उसको ले लेते हैं। हमारे पास एक बहुत ही प्यारी सी, हमारी बिल्कुल नई नई सी, हमारी लिसनर कहें, हमारी फैमिली का एक न्यू मेंबर कहें, वो जुड़ी हैं। ये है सारा तालिब, जो कि बेसिकली बिलोंग करती हैं यूपी बिजनौर से, लेकिन फ़िलहाल अब यहाँ अपनी जॉब के सिलसिले में दिल्ली में बस गई हैं। शाहीन बाग ओखला से हमें मैसेज कर रही हैं और कह रही हैं कि हेलो सबीहा, हाउ आर यू, आई एम फाइन। कह रही हैं कि पेशे से मैं एक इंजीनियर हूँ और फ़िलहाल यहीं दिल्ली में फ़िलहाल अपना क़याम कायम कर चुकी हूँ। और सबीहा, आपके शो के ज़रिए से एक प्यारा सा मैसेज है जो मैं अपने पेरेंट्स तक, अपने वालदैन तक, अपने माँ बाप तक पहुँचाना चाहती हूँ। और कुछ दिल की बातें हैं जो इंसान शायद कभी ज़्यादा खुलकर नहीं कह पाता, लेकिन ये जो एक प्लेटफॉर्म है एफएम का हमारे पास, इसके ज़रिए से कई बार बहुत सारी बातें इंसान अपनों को कह जाता है। तो जी हाँ, ये कह रही हैं कि सबीहा, मेरी जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मुझे ज़िंदगी में सब कुछ दिया है। हर किसी के माँ बाप देते हैं और मुझे लगता है कि हर इंसान का अपने माँ बाप से एक अलग और लगता है कि बिल्कुल अनोखा रिश्ता होता है। ये कह रही हैं कि सबीहा, मेरी जो मदर हैं उनका नाम है फरजाना अफरोज़ और जो मेरे फादर हैं उनका नाम है मिर्ज़ा तालिब बेग, और ये तीन बहनें और

भाई हैं। अपना नाम तो मेंशन किया है, एक छोटी बहन भी है और एक और बहन है जो इनकी अब शादी के बाद बस चुकी हैं वेस्ट बंगाल में, जिनका नाम सैम है, जो यहाँ मेंशन करा है इन्होंने। और ये कह रही हैं कि सभी आप, बेसिकली बात यह है कि आपके ज़रिए से मैं अपने पेरेंट्स को एक बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहती हूँ, उनके उस जज्बे के लिए, उनके उस हौसले के लिए जो ज़िंदगी भर उन्होंने मेरे लिए दिखाया है। ज़िंदगी की हर खुशी मुझे दी है और आज मुझे इतना कामयाब बनाया है कि आज मैं एक सेल्फ डिपेंड लड़की होकर दिल्ली में अपने लिए बहुत कुछ तलाश कर रही हूँ और कई सारे ऐसे मौके भी हैं जो मुझे मिल भी चुके हैं, यानी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ये पा भी चुकी हैं और एक कामयाब खूबसूरत लड़की के तौर पर अपनी ज़िंदगी को एस्टेब्लिश बनाने में लगी हैं। तो वेल सारा, हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं और आपने कहा है कि मैं अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती हूँ और आपके ज़रिए से उन्हें कहना चाहती हूँ कि आप के उस सब चीज़ों के लिए थैंक यू जो मैं आज तक नहीं कह पाई, लेकिन उन सभी के लिए कहना चाहूँगी जो आपने मुझे दिया बिन मांगे। तो वेल मुझे लगता है कि सारा, आपके पेरेंट्स तक आपका ये खूबसूरत और इमोशन से भरपूर मैसेज पहुँच गया होगा। उम्मीद करते हैं कि वो आपकी इस मीठे से जेस्चर को ज़रूर फील करेंगे और आपकी इस मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। खैर चलिए सारा, ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा हमारे साथ और हम आपके साथ इसी तरह बने रहेंगे।

जनाब, ऐसी ख्वाहिश वही कर सकता है जो हद दर्जा आपसे मोहब्बत करता हो, जो आपको किसी के साथ बांट ना सके, आपको किसी के साथ साझा ना कर सके। और हमेशा कहा जाता है कि मोहब्बत करें तो बेहतरीन और लाजवाब करें, वरना मोहब्बत में रखा ही क्या है, बेशुमार गम और अनगिनत रुसवाइयाँ। लेकिन जब मोहब्बत, प्यार, इश्क किसी से करें तो ऐसा करें कि दूसरे को इतनी इज्जत दें कि उसको आपकी मोहब्बत पर फख्र महसूस होने लगे। कुछ खुशनसीब लोग हैं ऐसे जो ऐसे ही मोहब्बत करते हैं, और वहीं कुछ बदनसीब लोग मोहब्बत की कदर नहीं समझते। शायद ऐसे लोग दूसरे इंसान को अपने से कमतर महसूस करने लगते हैं और सोचते हैं कि शायद सामने वाला इंसान जो हमसे इस कदर मोहब्बत, या यूं कहूं कि इस हद शिद्दत से मोहब्बत कर रहा है, तो शायद उसमें ही कोई कमी है। लेकिन जनाब, ये कमी नहीं बल्कि आप उसकी जिद या आप उसकी बेतहाशा मोहब्बत का मरकज बन चुके हैं। इसलिए कद्र कीजिए उसके जज्बात की, क्या पता कल उससे बेहतर या उससे चाहने वाला आपको कभी नसीब ना हो। लिपटा है मेरे दिल से किसी रास की सूरत, लिपटा है मेरे दिल से किसी रास की सूरत, वो शख्स के जिसको मेरा होना भी नहीं है। ये इश्क व मोहब्बत की रवायत भी अजब है, ये इश्क व मोहब्बत की रवायत भी अजब है, पाना भी नहीं है उसे, खोना भी नहीं है। चलिए हुजूर, आप ना खो जाएं, मतलब आपके खूबसूरत पैगामात ना खो जाएं, उससे बेहतर है कि आप को हम अपने प्रोग्राम में शामिल कर लें। तो चलिए, कुछ मैसेज जो मुझ तक पहुंचे हैं उनको भी शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, और हमेशा की तरह प्रोग्राम की तारीफ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त निकाल कर सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हैं, बेहद शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ गए हैं दानिश इकबाल खतौली से। सबीहा मैम, आप कैसी हैं? आपकी उर्दू बेहद अच्छी है और वॉइस तो है ही कमाल की, साथ ही साथ उर्दू बोलती आप बहुत अच्छी हैं। नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच सर। और इसके साथ हमारे साथ जुड़ी हैं, हेलो सबीहा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू यू। आपके प्रोग्राम का इंतज़ार बड़ी बेसब्री से कर रही हूँ मैं, पुष्पा, अहमदाबाद गुजरात से। जैसे बहुत गर्मी में बारिश से राहत मिलती है, वैसे ही आपके प्रोग्राम से हमें सुकून मिलता है। थैंक यू सो मच मैम, इतनी मोहब्बत के लिए बेहद शुक्रिया आपकी इस मोहब्बत के लिए। और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे जो रेगुलर लिसनर हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन काफ़ी लंबा मैसेज सर आपने किया है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ छोटा मैसेज करें तो अच्छा लगेगा, फिर भी कोशिश करती हूँ आपकी मैसेज पढ़ने की। डियर आरजे सबीहा नकवी, आपकी बातें सुनकर दिल भर आया, ये दर्द दिल के बड़ा करीब है। अच्छा, जो मैंने से पहले वाले शो में अपनी बातें का जिक्र किया था उन्हीं को इन्होंने यहाँ दोहराया है, और बेहद अफसोस जाहिर किया है उन चीज़ों पर जो हम जिक्र कर रहे थे। चलिए, आपकी इस कंसर्न के लिए, आपकी इस तवज्जो के लिए बेहद शुक्रिया। मोहम्मद सरफराज आलम साहब, जो कि हाट दशरा बहार, ज़िला अररिया बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया। ये होता है, इंसान जब अपने दर्द में किसी का दर्द महसूस करता है ना, तो सच मानिए कि वो इंसान दिल से बहुत अच्छा होता है। और आप सब दिल से बहुत अच्छे हैं, इसलिए मुझे अपना मानते हैं, और मेरी खुशी, मेरे दर्द, मेरी मोहब्बत, मेरे जज्बात, मेरे एहसास, मेरे इमोशंस को अपना मानकर बहुत कुछ लिख भेजते हैं। माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि बहुत लेंथी मैसेज नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन आपकी सारी बातें दिल तक पहुँचती हैं। फ़िलहाल आप तक पहुँच रहा है आज का ये अगला नगमा।

अब के हम बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो फिर क्यों इतने हिजाबों में मिले।

जी हाँ हुजूर, दुनिया की रुसवाइयां और दुनिया के तानों से डरकर अक्सर रिश्ते दम तोड़ देते हैं। ऐसे रिश्ते जो शायद कमजोर नींव पर बने होते हैं, ऐसे रिश्ते जो शायद दुनिया से डरकर या रिश्तों में खोखलापन पाकर अपनी उम्मीदों को खत्म कर देते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है जनाब कि ऐसे रिश्ते बनाने ही क्यों हैं? क्यों ना ऐसे रिश्तों को तामीर किया जाए जो मजबूत हों, जो आपके साथ ताकयामत आपके पास रहें। ऐसे रिश्ते जिनमें ना कोई बेहयाई हो, ना बिछड़ने का डर, ना जुदाई का गम। ऐसे रिश्ते जो पाकीज़ा मोहब्बत पर दम भरते हों। ऐसे रिश्ते जो मोहब्बत के साथ मोहब्बत के साथ मोहब्बत पे फख्र महसूस करा सकें। ऐसा ही रिश्ता तो है मेरा और आपका, खुलूस का, अकीदे का, मोहब्बत।

का, जज्बात का, एहसास का, जो आपके मैसेजेस के जरिए मुझ तक पहुंच रहे हैं। चलिए अब कुछ और मैसेज शामिल कर लेते हैं, वरना हमारे सारे लिसनर्स कहेंगे सबीहा हमारे मैसेज की तरफ भी नजरे करम करिए। चलिए जनाब, गुड इवनिंग सबीहा, गुड इवनिंग टू यू सर, वेलकम टू द शो। रात की इस तरह में गजलों का ये खूब जो आप प्रोग्राम दे रही हैं अपने शबाब पर है, हवाओं और फिजाओं में आपकी तैरती हुई खूबसूरत आवाज़ बेहद सुकून दे रही है। नाइस प्रेजेंटेशन किशन वंजानी, नीलम स्वाति और कीशु रेलवे कॉलोनी आनंद बिहार से हमें मैसेज कर रहे हैं। अगला मैसेज, एक बार फिर से अपनी शायरी यहां दर्ज करा दी है, सरफराज आलम साहब, जोशी नहार दर्शना बहार जिला अररिया बिहार से। बिछड़ कर तुम उससे जुदा ना हो सका, तू मेरी यादों की पनाहों में आज भी है। भले ही मंजिलें अलग हो गई हमारी, मगर तेरा नाम मेरी दुआओं में आज भी है। बहुत खूब। बेशक गुले सुकून मेरे दिल में कोई खिले, मेरे चाके जिगर भी आकर एक बार वो सिले। न सागर तमाम याद कर यूं सोख लूं खुदाया, कि कतरा भी आंसुओं का मेरे यार को मिले, मेरे यार को ना मिले। प्रेमचंद प्रेमी जैतरा धामपुर बिश्नौर से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत खूब। खैर आप तो हैं ही, किसे कहते हैं कि कलम के कलाकार, और अपनी खूबसूरत शायरी से, बातों से, अपनी अदायगी से आप हमेशा हम सबको लबरेज करते रहते हैं। तो बेहद शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में शामिल होने से। एक बार दानिश भी खतौली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ हाँ भाई, मुझे पता है दानिश आप भी प्रोग्राम में मेरे साथ हैं, और इसी तरह साथ बनाए रखिएगा और इस पाकीज़ा रिश्ते और इस पाकीज़ा मोहब्बत को अपने वजूद से महकाते रखिए।

सारी दुनिया के रिवाजों से बगावत की थी, सारी दुनिया के रिवाजों से बगावत की थी, इतना रोए थे कि आंखों ने कयामत की थी। मेरे उजड़ने का सबब जब भी किसी ने पूछा मुझसे, मेरे उजड़ने का सबब जब भी किसी ने पूछा मुझसे, मैंने बस इतना कहा मैंने मोहब्बत की थी। जी हाँ हुजूर, मोहब्बत को जितनी बुरी चीज़ लोगों ने आजकल बना दिया है, उतनी चीज़ बुरी है नहीं। अगर कायदे से की जाए और अकीदे से की जाए तो मोहब्बत से हसीन और ख़ूबसूरत शय और दुनिया में है नहीं। और हमारा ये जो शो है ये भी मोहब्बत पर ही बेस्ड है। जी हाँ, इसमें बातें की जाती हैं वो खूबसूरत जो आपके दिल को सुकून दे सके, आपकी ढलती हुई इस रात में आपकी दिन भर की जद्दोजहद को सुकून पहुंचा सके। इसीलिए मोहब्बत से ज़्यादा मीठी और ख़ूबसूरत चीज़ और कोई नहीं हो सकती। और हमेशा मैं कहती हूँ कि अलग अलग किरदार अलग अलग मोहब्बत के तकाजे हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक ही इंसान के इर्द गिर्द आप मोहब्बत को तलाशना शुरू करें, अपने दोस्तों में ढूंढने, अपने वालदैन में ढूंढें, अपने दोस्त अहबाबों में ढूंढें, अपने किसी ऐसे साथी में ढूंढें जो महबूब के दर्जे से अलग लेकिन दिल के बहुत करीब हो। इसीलिए मोहब्बत जिसमें ढूंढेंगे वैसे ही पालेंगे। और अगर अकीदे से मोहब्बत की जाए जनाब तो मोहब्बत ज़रूर कामयाब होती है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई दर्द रसवाइयाँ बदनामियाँ इस मोहब्बत में यही बचा है। जनाब ये नहीं बचा, इसमें वो सब कुछ बचा है जो आप दिल से महसूस करना चाहते हैं। अगर दिल से महसूस करेंगे तो इसमें वो सब है जो आप अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, यानी एक दूसरे का साथ, एक दूसरे के लिए की पॉजिटिविटी। और आप सब जो एक दूसरे के लिए शख्स ढूंढते हैं ना कि शायद कोई हमारे दिल की बात सुन ले, शायद कोई हमारे दिल का दर्द समझ ले, या कुछ पल कुछ लम्हे ही सही कोई इंसान रुककर हमारी भी तो सुने। तो अगर दुनिया में कोई ऐसा साथी कोई ऐसा दोस्त आपके लिए मुनक़हित या मुकर्रर है तो उसकी कद्र करें और उसे ज़िंदगी में हमेशा अपने पास रखें।

जी हाँ, ऐसे ही पास और ऐसे ही साथ मैंने भी आपकी सूरत में अपने तक रखा है, यानी आपके मैसेज, यानी आप। सौरभ अनेजा एक बार फिर से मेरे साथ हैं। आपकी शायरी कमाल होती है, ये तो नहीं बोलना चाहिए कि जिनके पास आपकी शायरी की तारीफ ही सुनना पसंद है। अच्छा, अरे आपके कुछ अलग ही जो मैसेज हैं वो चलते रहते हैं सौरभ। खैर, मैं जानती हूँ कि आप दिल से समझ रहे हैं और तारीफ़ भी करते हैं और सराहते भी हैं, न सिर्फ मुझे बल्कि यहाँ हमारे जितने भी आरजेज हैं, सबकी अलग अलग पसंद हो सकती है। आप काफ़ी सारे लोगों को पसंद करते हैं और बहुत सारी जो हमारे लिसनर्स हैं सबको अलग अलग तौर पर हमें पसंद करते हैं, और हर किसी का रिश्ता हर किसी के साथ अलग अलग हो सकता है। तो बिल्कुल, और हमारा रिश्ता आप सब के साथ एक सा है, खुलूस का, मोहब्बत का, एहसास का। चलिए, सबीहा जी नमस्ते। हमेशा की तरह आपका प्रोग्राम बेमिसाल है और हमें फ़ख्र है आप पर, और ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रेमचंद प्रेमी धामपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए, बेहद शुक्रिया। फ़िलहाल आप तक मैं यही पहुँचा सकती हूँ जब आप सुनेंगे।

सर दूर हो सर हश्र हो हमें इंतज़ार कबूल है। सर दूर हो सर हश्र हो हमें इंतज़ार कबूल है। तू कहाँ मिले तू कभी मिले तू कभी सही तू कहीं मिले। जी हाँ हुज़ूर, ये इंतज़ार भी खूबसूरत और मीठा लगता है जब किसी को दिल से चाहने की उम्मीद दिल में जाग जाती है। अगर मेरा ही इंतज़ार की बात करें तो जी हाँ, मुझे आपका भी इंतज़ार खूबसूरत और बेहशिद्दत से रहता है, क्योंकि इस इंतज़ार के बाद जो मिलने का लज्जत है ना, वो दोबाला हो जाती है जब ढेर सारे प्यार के साथ आप मुझ तक पहुँच जाते हैं। तो जी हाँ जनाब, कुछ लिसनर्स पूछ रहे हैं कि सबिया, जाने से पहले ये ज़रूर बताइएगा कि अगली मुलाकात कब हो रही है। तो जनाब, अगली मुलाकात में कुछ अरसे का

इंतजार रहेगा या कुछ दिनों का इंतजार रहेगा, यानी अगली मुलाकात होगी इंशाल्लाह 7 जून को इसी शो में, यानी आपकी याद आती रही बज़्मे रंगे महफिल, दो शो में हम मिलेंगे आपके पास आपके साथ। और उससे पहले चलिए जो मैसेज मुझ तक पहुंचे हैं वो ले लेते हैं। हेलो सबीहा, सॉन्ग्स यानी गाने पसंद आ रहे हैं। ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। पुष्पा जी ने भी अपना कंसर्न, अपना प्यार मुझ तक पहुंचाया है। थैंक यू सो मच, आपने इतना कंसर्न दिखाया मेरे लिए और बेहद मोहब्बत के लिए शुक्रिया। चलिए ये कुछ लिसनर्स थे हमारे साथ जिन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और बताया मुझे कि वो मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आपकी मोहब्बत के लिए बेहद शुक्रिया। हाँ, विजय कुमार नामदेव जी भी हमारे साथ जुड़े थे दिल्ली से। नमस्ते सबीहा मैम, कैसी हैं आप? हमेशा की तरह सभी सॉन्ग, शायरी और प्रेजेंटेशन आपकी कमाल की रही, बहुत पसंद आई। थैंक यू सो मच सर। शब्बा खैर कह रहे हैं आप, आपको भी शब्बा खैर। और जाने से पहले कहूँगी वही एक बात कि इस प्रोग्राम के मुतालिक अगर आपको कोई भी फीडबैक, कोई भी राय देनी है तो बिल्कुल दे सकते हैं। जो ज़रियात हैं वो आप बिल्कुल से जानते हैं, बिंदास बोल में भी दे सकते हैं, मेल के ज़रिए से भी दे सकते हैं आप। मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी वो कीमती राय का जिसकी मुंतज़िर मैं हमेशा रहती हूँ जनाब। तो कहूँगी वही एक ख़ास बात कि अपना रखिएगा बेहद बेहद ख़ास ख्याल, क्योंकि आप हैं किसी के लिए बेहद ख़ास और वो ख़ास मैं हूँ। जी हाँ जनाब, अगली मुलाकात तक आपको ढेर सारा ख्याल रखना है, खूब अच्छे से खाना पीना है। अगर बारिश आपके शहर में हो तो उससे भी आपको लज्जत लेनी है, उससे भी इंजॉय करना है। और फिर मुझे खुलकर बताइएगा कि किस शहर में कितनी बारिश हुई और आपने कैसे इंजॉय, यानी कैसे आपने उसकी लज्जत ली। फ़िलहाल मुझे यानी अपने दिल की आवाज़ सभी नकवी को दीजिए इजाज़त। जाने से पहले कहूँगी खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, जाते जाते ढेर सारा प्यार आप सभी के लिए और बहुत सारा ख्याल आप सभी के लिए। खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, जाते जाते आप सभी के लिए ये आखिरी पेशकश।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुदेन्द्र टंडन ने मीडिया को बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के साथ नागरिक के अधिकारों की रक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल शिलांग में उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र NESAC की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास, आपदा प्रबंधन, जलवायु अनुकूल शासन और वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 5 प्रमुख रणनीतिक पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की। इनमें उच्च रिजोल्यूशन, ग्राम संसाधन मानचित्रण, आर्द्र भूमि, वन, नदियों और भू दृश्यों की नियमित निगरानी, पूर्वोत्तर में भू स्थानिक और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा, सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म NER शील्ड का विकास तथा प्राकृतिक संसाधनों के आकलन के लिए विशेष ढांचा तैयार करना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ अलका गुर्जर और डॉ सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉ सुभाष सी कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ कश्यप ने अपने शोध, लेखन और जनसेवा के माध्यम से भारत के संविधान और संसदीय लोकतंत्र की समझ में अमूल्य योगदान दिया। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के रॉन ताई और कैंग खाईचिंग को शिकस्त दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ, हमारे श्रोता सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथियों, समय हो रहा है रात्रि के 12:05 और 27 सेकंड्स, और ये है वक्त आपके पसंदीदा कार्यक्रम जीरो आर शो का। तो कार्यक्रम में मैं रहूंगी आपके साथ, आपके साथ ही अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यारा सा नमस्कार। बताइए साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो लीजिए, आनंद लीजिए इन प्यारे से गीतों का, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक के अंतर्गत।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम जीरो आर शो। आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथ ही स्टूडियो की घड़ी में

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल शिलांग में उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र NESAC की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास, आपदा प्रबंधन, जलवायु अनुकूल शासन और वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 5 प्रमुख रणनीतिक पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की। इनमें उच्च रिजोल्यूशन, ग्राम संसाधन मानचित्रण, आर्द्र भूमि, वन, नदियों और भूदृश्य की नियमित निगरानी, पूर्वोत्तर में भूस्थानिक और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा, सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म NER शील्ड का विकास तथा प्राकृतिक संसाधनों के आकलन के लिए विशेष ढांचा तैयार करना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ. अलका गुर्जर और डॉ. सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा और मंसूर अली खान को कर्नाटक से उम्मीदवार बनाया गया है। मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन, राजस्थान से नीरज डांगी और झारखंड से प्रणव झा को पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा है। इसके अलावा तमिलनाडु से होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए प्रवीण चक्रवर्ती को कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया गया है। उपराष्ट्रपति सीबी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉ. सुभाष सी कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. कश्यप ने अपने शोध, लेखन और जनसेवा के माध्यम से भारत के संविधान और संसदीय लोकतंत्र की समझ में अमूल्य योगदान दिया।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर कश्यप देश के अग्रणी संवैधानिक विद्वानों में से एक थे, जिनके संसदीय और संवैधानिक विमर्श से जुड़े योगदानों ने समाज को समृद्ध किया। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइकिन को शिकस्त दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो। समय आपको बताए देते हैं साथियों, स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 1:05 और 28 सेकंड्स हुए हैं। और लीजिए अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुहानी रात। इसमें आप सुनेंगे नॉन स्टॉप फील्ड म्यूजिक।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
8: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल

वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: شام उनके नाम जो करते हैं
1: क्या
0: लव लव

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल शिलांग में उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र NESSC की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास, आपदा प्रबंधन, जलवायु अनुकूल शासन और वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 5 प्रमुख रणनीतिक पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की। इनमें उच्च रिजोल्यूशन, ग्राम संसाधन मानचित्रण, आर्द्र भूमि, वन, नदियों और भू दृश्यों की नियमित निगरानी, पूर्वोत्तर में भूस्थानिक और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा, सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म NER शीड का विकास तथा प्राकृतिक संसाधनों के आकलन के लिए विशेष ढांचा तैयार करना शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ. अलका गुर्जर और डॉ. सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा और मंसूर अली खान को कर्नाटक से उम्मीदवार बनाया गया है। मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन, राजस्थान से नीरज डांगी और झारखंड से प्रणव झा को पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा है। इसके अलावा तमिलनाडु से होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए प्रवीण चक्रवर्ती को कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। SBI रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रा स्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपये के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 5-7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। उनकी ये यात्रा विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री खनाल नई दिल्ली में डॉ. जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और लोगों के बीच संपर्क जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। ये दौरा नेपाल और भारत के बीच स्थायी और बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जरिए से 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं। साथियों, स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है 2:05 और 22 सेकेंड्स, और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम भुलाए ना बने। ये कुछ खूबसूरत से गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं, और वही आपके लिए नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक। मैं रहूंगी आपके साथ कार्यक्रम में अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यारा सा नमस्कार।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
4: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम भुलायना बने अब यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि का 3 बजने जा रहा है। कुछ ही पलों में अब आप समाचार सुनेंगे। बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि बातचीत का मुख्य विषय

0: ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: The discussions also...
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: Can enter the Venezuelan market successfully.
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 5 से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। उनकी ये यात्रा विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। ये दौरा नेपाल और भारत के बीच स्थायी और बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के मुख्य वार्ताकार के नेतृत्व में आया अमरीकी प्रतिनिधिमंडल भारत की 4 दिन की यात्रा संपन्न कर कल स्वदेश लौट गया। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच वस्तुओं के व्यापार, गैर शुल्कीय बाधाओं, सीमा शुल्क तथा व्यापार सुगमता, आर्थिक सुरक्षा समन्वय और अन्य साझा हितों से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में पारस्परिक और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1 वर्ष का सेवा विस्तार देने की मंजूरी दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल इस महीने की 10 तारीख से प्रभावी होगा और ये 1 और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने UNIFIL के साथ तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। भारतीय मिशन ने सोशल मीडिया पर इस हमले में मारे गए सर्बियाई शांति सैनिक को श्रद्धांजलि अर्पित की और घायल शांति सैनिक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कल केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और कराईकाल में भी आज तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है।

श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। उनकी ये यात्रा विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। ये दौरा नेपाल और भारत के बीच स्थायी और बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने की मंजूरी दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल इस महीने की 10 तारीख से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और उपाय अपना सकता है। आज पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1973 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कल केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और कराईकाल में भी आज तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी आज गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पहाड़ियों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

धर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।